0: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में ना हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
1: Over to Red Fort.
2: Vande Mataram and Namaskar. On the occasion of India's 80th Independence Day, I, Anoop Kaur, with my fellow commentators Kaushik Roy and Munish Jolly, extend a joyous greetings to all Indians who are tuned into this very special broadcast being brought to you live from the ramparts of the iconic Red Fort. And also joyous greetings, dear listeners, for a happy Tej. The Red Fort, with its magnificent red sandstones, is standing proudly, glowing and beaming in the early morning light. Every stone whispering a story, every arch bearing the imprint of history.
3: It's आज के इस अवसर पर गौरव के इन पलों में श्रोताओं, आप सभी को देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। दिल्ली स्थित लाल किले के प्राचीर से मैं जैनेन्द्र अपने साथी कमेंटेटर्स नीलम मलकानिया, देवेंद्र त्रिपाठी और आकाशवाणी की पूरी टीम के साथ आप सभी का इस विशेष प्रसारण में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं।
4: वंदे मातरम। लाल किले की इस ऐतिहासिक प्राचीर से आप सभी को पुनः

0: स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 2026 की ये सुनहरी सुबह भारत के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ने जा रही है। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि आज पूरे गर्व और उल्लास के साथ अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रही है। कोटि कोटि कंठ आज वंदे मातरम, जय हिंद और भारत माता की जय का उद्गार कर रहे हैं। देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम और उत्साह के रंग में रंगे हुए भारतीय और भारतवंशी देश विदेश में विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। साथियों, आप जानते ही हैं कि मुख्य आयोजन यहां लाल किले पर हो रहा है, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री स्वयं राष्ट्र का नेतृत्व करते हुए प्राचीर पर बने ध्वज स्थल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। आकाशवाणी की तकनीकी और कार्यक्रम टीम यहां से आंखों देखा हाल आप तक पहुंचाने के लिए तैयार है। आज तो किले की छटा ही निराली है, जैसे ये स्वयं पर इठलाता हो कि यहीं से हर वर्ष हमारे इस राष्ट्रीय पर्व ने देश दुनिया को एक नई राह दिखलाई है। चहुं ओर भक्ति भाव और उत्साह का भाव परिलक्षित हो रहा है। किले की विशाल और शक्तिशाली दीवारें रंग बिरंगे पुष्पों और पताकाओं से सजाई गई हैं। स्वतंत्रता दिवस की बधाई वाले होर्डिंग्स हैं, बैनर हैं, पोस्टर्स लगे हैं, तो सुरुचिपूर्ण पुष्प सज्जा भी की गई है। इस बार के आयोजन की थीम है वंदे मातरम। हमारे इस राष्ट्रीय गीत के 150 गौरवशाली वर्षों को याद करते हुए आज वंदे मातरम की गूंज यहां बार बार सुनाई दे रही है। ज्ञान पथ के सामने किले की विशाल दीवार पर ताजे पुष्पों से वंदे मातरम लिखा गया है। प्रेरणादायी संवर्धन ये है कि पहली बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी गूंजेगा। किले की बाहरी दीवार पर लगे कटआउट्स परमाणु और अंतरिक्ष तकनीक में भारत की प्रगति को दर्शा रहे हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, मातृभूमि का वंदन करते हुए, नमन करते हुए, मातृभूमि के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हुए यहाँ पर अनेक प्रतीक चिन्ह हैं। हम आपको बताएं कि लाल किले की भव्य प्राचीर पर दोनों ओर दो बड़े बुर्ज हैं, इन्हीं से सटा हुआ हमारा कमेंट्री बूथ है। प्राचीर के ठीक बीच में कुछ ऊंचाई पर ध्वज स्थल है, जो हमारे दाहिनी ओर है और इस समय ताजे फूलों से सजा हुआ है। ध्वज दंड को भी फूलों की लड़ियों से सजाया गया है। खुशनुमा मौसम में सुबह की मध्यम बहती मंद बयार के साथ ताजे फूलों की गंध हमारी उत्सव धर्मिता में शामिल हो रही है। आज वैसे भी तीज है, आप सभी को तीज पर्व की भी शुभकामनाएं। और तीज को माना जाता है बहुत ही शुभ अवसर, क्योंकि त्योहारों की शुरुआत इससे होती है। ऐसे में तीज के अवसर पर जब हमारा राष्ट्रीय पर्व है, तो हमारे राष्ट्रीय पर्व ने अनेक पर्वों की गरिमा साथ ही बढ़ा दी है। ध्वज स्थल के दोनों ओर दर्शक दीर्घा बनाई गई है। लाल रंग की कुर्सियां करीने से सजी हुई हैं और उन पर आमंत्रित अतिथि गणों के नाम भी लिखे हैं। दाहिनी ओर की दर्शक दीर्घा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश हैं तथा पद्म पुरस्कार विजेता अन्य अतिथि हैं। और बाईं ओर की जो दर्शक दीर्घा है, उसमें केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति है। हम आपको बताएं कि यहां से हम देख सकते हैं उपस्थिति है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की, श्री पीयूष गोयल हैं, श्री नितिन नवीन यहां से हम देख सकते हैं, श्री हरदीप सिंह जी की उपस्थिति है, श्री मनसुख मांडविया जी हैं, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, डॉक्टर जयशंकर उपस्थित हैं, श्री गिरिराज सिंह जी हैं, श्री नितिन गडकरी जी हैं, श्री अश्वनवी वैष्णव जी हैं, दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू जी की भी गरिमा में उपस्थिति यहां पर है। वर्दी पहने सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति है, तो आकर्षक परिधानों में उल्लासित बच्चे भी हमें दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ से।
1: माननीय प्रधानमंत्री महोदय कुछ ही देर में यहाँ लाल किले के प्राचीर पर पहुंचेंगे, और जब वे प्राचीर के ऊपर बने ध्वज स्थल पर पहुंचेंगे, तो सबसे पहले राष्ट्रगीत, पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहला अवसर होगा जब स्वतंत्रता दिवस के समारोह में राष्ट्रीय गीत की धुन और स्वर यहां पर गूंजेगा। राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी। यहां आने से पहले माननीय प्रधानमंत्री महोदय राजघाट पहुंचकर वहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद यहां के लिए वो प्रस्थान करेंगे। लाल किले के ये प्राचीर और ये पूरा परिदृश्य अद्भुत है। इस समय ईश्वर की कृपा भी है, क्योंकि मौसम बहुत खुशनुमा है, आसमान घने बादलों से ढका हुआ है, इसलिए धूप की रश्मियां जो है वो धरती तक नहीं पहुंच पा रही है और लोग बहुत ही सुखद वातावरण में यहां बैठे हुए हैं। लगभग 27 डिग्री का यहां तापमान हम समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, लगभग इतना ही यहां पर तापमान है। और पक्षियों के कलरों के साथ हल्की हल्की मंद बयार के साथ जो पताकाएं लगी हैं वो लहरा रही हैं हवा के साथ, हमारे राष्ट्रीय ध्वज जहां जहां तक हमारी दृष्टि जाती है वहां तक लगे हुए हैं, वो भी लहराते हुए एक नई ऊर्जा का संचार हम सबके भीतर कर रहे हैं। वैसे भोर तो हर सुबह हर रोज होती है, लेकिन आज की भोर

0: अन्य दिनों से बिल्कुल हटकर है, क्योंकि भारतवासियों के लिए बहुत विशेष है, हो भी क्यों ना। आज ही के दिन तो 15 अगस्त को सन 1947 में दुनिया के मानचित्र पर स्वतंत्र देश के रूप में भारत का उदय हुआ था। वही भारत जिसके बारे में विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत समुदस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थात समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूभाग है उसे भारत कहते हैं और हम स्वयं को भारतीय कहते हैं। मंच की सज्जा को आपने जाना, अनुभव किया होगा, अपने अपने कल्पना में उसे सजीव भी किया होगा आपने। मंच के ठीक सामने जो ज्ञानपथ का क्षेत्र है वहां सबसे पहले हमारी दृष्टि जहां जाती है वो है राष्ट्रीय सलामी गारद जो वहां पर उपस्थित है ठीक सामने। इसमें सेना के तीनों अंगों और दिल्ली पुलिस की टुकड़ियां शामिल हैं। प्रत्येक टुकड़ी में 32 सैनिक हैं और एक अधिकारी उसमें शामिल है। राष्ट्रीय सलामी गारद का नेतृत्व कर रहे हैं मेजर लोकेंद्र सिंह। सेना की अपनी यूनिफॉर्म में वर्दी में सजे धजे गर्व से सीना तरा हुआ सेना की टुकड़ी की कमान मेजर विकास यादव के हाथों में है, जबकि लेफ्टिनेंट कमांडर अभिलाष नौसेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं अपने सफेद यूनिफॉर्म में और पीकैप के साथ। वायुसेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर उमेश जी और एडिशनल डीसीपी विकास मीणा दिल्ली की टुकड़ी दिल्ली पुलिस की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं। और हमारे ठीक सामने उस राष्ट्रीय सलामी गारद के दाहिनी हिस्से में वहां पर बैंड दल उपस्थित है जो राष्ट्रीय सलामी के समय राष्ट्रीय धुन बजाएगा और उसके पहले राष्ट्रीय गीत यहां पर बजाएगा। लेकिन उनके पीछे भी एक ऊर्जा का अनुभव अद्भुत दृश्य हम देख पा रहे हैं श्रोताओं, क्योंकि ये इस बार का आयोजन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से प्रदर्शित कर रहा है जिसको हम यहां के कणकण में यहां के पूरे वायुमंडल में हम उसको महसूस कर सकते हैं, यहां के वातावरण में महसूस कर सकते हैं। क्योंकि जहां वंदे मातरम की गूंज यहां पर हम सबको उत्कंठा से प्रतीक्षा है, उस क्षण की जब पहली बार यहां से उसे बजाया जाएगा और गाया जाएगा, उसके साथ साथ बड़ी संख्या में युवा शक्ति यहां पर एक नई ऊर्जा का प्रतिबिंब लेकर उपस्थित है। और इसमें सामने जो दृश्य हम देख पा रहे हैं ज्ञानपथ पर, वहां लगभग 2500 की संख्या ऐसे विद्यार्थियों की है जो एनसीसी से संबंधित रखते हैं, एनसीसी के तीनों विंग से संबंधित रखते हैं, और उसके साथ साथ हमारे माई भारत वॉलंटियर स्वयंसेवक भी इसमें शामिल हैं। और इन्होंने जो अधिसंख्य हैं, बहुसंख्यक हैं, उसमें उन्होंने सफेद रंग की वेशभूषा पहन रखी है, ज्यादातर जिनकी संख्या है, लेकिन बीच में कुछ ऐसा रंग है जो हमारे केसरिया रंग यानी हमारे बलिदान का भी प्रतीक है, और उसी रंग के साथ केसरिया रंगों की वेशभूषा के साथ उन्होंने यहां रचा है वंदे मातरम। क्योंकि वंदे मातरम इस बार इस पहली बार इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में गूंजेगा
1: जी। उत्तर से लेके दक्षिणी लकीर तक, पूर्वा से लेके पश्चिमी समीर तक, सागरों से लेके नदियों के तीर तक, पर्वतों से लेके घाटियों के तीर तक, आत्मा से लेके नश्वर शरीर तक, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, चाहे जिंदा रहें चाहे मर जाएं हम गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। देश की संचयी शक्ति जो देश का इतिहास अपने आप में समेटे है, एक अभिवादन भी है, सम्मान भी है, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की पहचान भी है। ये दो शब्द जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में देशवासियों को एकजुट किया और आजाद भारत को भी सदा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। हम आपको बताएं साथियों, वंदे मातरम जो यहां से हम देख रहे हैं, एनसीसी कैडेट्स ने जो मानव संरचना में लिखा है, बेहद प्रेरक बेहद खूबसूरत यहां से जान पड़ रहा है। और साथ ही जो अन्य यहां पर बच्चे हैं वो उत्सुकता से एक तक इन बच्चों को निहार रहे हैं। आज के आयोजन के लिए राजधानी में परिवहन व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। वैकल्पिक मार्गों के बारे में काफी पहले से ही जानकारी साझा की गई है। कई दिन पहले से ही सभी प्रमुख चौक चौराहों पर, महत्वपूर्ण भवनों पर रंग बिरंगी प्रकाश सज्जा की गई है। साथ ही जन समुदाय की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है। राजधानी को गति देने वाली मेट्रो भी हमारे इस राष्ट्रीय पर्व का आज हिस्सा है, अपनी सेवा देते हुए आज सुबह 4 बजे से सरपट दौड़ रही है। यहां आयोजन स्थल के आसपास क्लॉक रूम, व्हीलचेयर और पेयजल की व्यवस्था की गई है। लगभग 23,000 आगंतुकों को इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। अपनी सजीली सैन्य वर्दी पहने अधिकारी हैं, आकर्षक परिधानों में यहां पर सामान्य जन हैं, एनसीसी कैडेट हैं, माई भारत स्वयं सेवकों ने जो संरचना बनाई है हमने आपको बताया कि बेहद यहां पर बनाई है हमने आपको बताया कि बेहद यहां पर आकर्षक है। सीढ़ीदार व्यवस्था में इनके दोनों ओर दर्शक दीर्घा बनाई गई है। एक ओर विद्यालय के छात्र छात्राएं अपने शिक्षकों के साथ बैठे हैं, अन्य आगंतुक हैं, तो दूसरी ओर भी सीढ़ीधार व्यवस्था में कुर्सियां करीने से लगाई गई हैं। हल्के जामुनी रंग की दरी पर हरे रंग की कुर्सियों पर आगंतुक

0: होकर आज के अवसर के लिए विशेष तौर से हमारे तिरंगे के जो तीन प्रधान रंग है उनके परिधान पहने हुए हैं। आज का ये आयोजन अलग अलग क्षेत्रों में हमारे युवाओं की उपलब्धियों को भी उजागर कर रहा है। इंटरनेशनल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ओलंपियाड में मेडल विजेता युवाओं को भी आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। नेशनल इनोवेशन कार्यक्रम से जुड़े युवा हैं, पीएम इंटर्नशिप योजना के छात्र हैं, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चयनित बेहतरीन स्टार्टअप के तहत चुने गए श्रेष्ठ प्रतिभागी हैं, माई भारत के स्वयंसेवक हैं, दिल्ली के विभिन्न विद्यालयों में हुई परीक्षाओं और प्रतियोगिताओं के विजेता विद्यार्थी भी इस समय यहाँ बैठे हैं। इस अवसर पर देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दिल्ली में रहने वाले 1500 से ज्यादा ऐसे लोगों को भी आमंत्रित किया गया है जो इस समय अपनी पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ बैठे हैं और लघु भारत का दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और एक खास बात ये है कि हमारी जल शक्ति का सम्मान रखते हुए इस बार जो प्रांगण घेरे हैं, एनक्लोजर्स हैं, इनके नाम प्रमुख झीलों के नाम पर रखे गए हैं। भीमताल, चंद्रताल, दूध सागर, रोबिंद्र सरोवर, रुद्र सागर, चिलिका, हाफलोंग नाम रखे गए हैं। हमें यहाँ दिखाई दे रहा है वो भारत जो समृद्ध है, जो संपन्न है, साथ ही जो संकल्पित है आगे बढ़ने के लिए और साथ ही विकसित भारत 2047 का लक्ष्य लिए जिसमें हर उम्र का देशवासी अपनी ओर से योगदान करने के लिए तैयार है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये स्वतंत्रता जिसने पराधीन भारत में जब देशवासियों को पुकारा तो अपनी जान की परवाह न करते हुए देशवासी जुट गए कि भारत माँ को हमें परतंत्रता की बेड़ियों से आजाद करवाना है। और अब यही स्वतंत्रता हमें ये प्रेरणा देती है कि लगातार आगे बढ़ते हुए हम जहाँ हैं, जो कर सकते हैं, देश प्रेम मन में रखे हुए, संजोए हुए, देश को विकसित करने की ओर लगातार बढ़े, अपना योगदान करें।
1: निश्चित रूप से, और इसीलिए भारत के भविष्य को लेकर जो संकल्पना है, विजन है, विशेष तौर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जिस गति से आगे बढ़ते हुए वर्ष 2047 तक यानी 100 वर्षों के स्वतंत्र भारत की यात्रा को पूरा करते हुए एक विकसित भारत के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके, उसका भी यहाँ दृश्य हमें साफ नजर आता है। यहाँ लाहौरी गेट पर प्रधानमंत्री महोदय का आगमन कुछ ही पलों में होने जा रहा है। वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और साथ ही रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह वहां पर उपस्थित हैं। साथ ही दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग भी वहां पर उपस्थित हैं, जो वहां प्रधानमंत्री महोदय की अगवानी करेंगे और वहां माननीय प्रधानमंत्री महोदय को सलामी दी जाएगी। और उसके बाद सलामी गारद का वो निरीक्षण करने के बाद लाल किले के प्राचीर पर पहुंचेंगे और आगे का जो कार्यक्रम है वो यहां आरंभ होगा। इस रूप में बिगुल वादन के साथ इस बात का संकेत मिल चुका है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के वाहनों का काफिला यहां प्रवेश कर रहा है। आइए आपको आगे के विवरण के लिए सीधे लिए चलते हैं देवेंद्र के पास, जो लाहौरी गेट पर उपस्थित है।
2: धन्यवाद जैनेन्द्र। मैं देवेंद्र त्रिपाठी आप सभी श्रोताओं का लाल किले के ऐतिहासिक प्रांगण में लाहौरी गेट से स्वागत करता हूं। इस द्वार के समक्ष होने वाली सभी गतिविधियों की जानकारी आपको साझा करूंगा, जहां माननीय प्रधानमंत्री को तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस की संयुक्त सलामी दी जाएगी। प्रधानमंत्री सम्मान कारक का निरीक्षण करेंगे, उसके बाद ऐतिहासिक 13वीं बार ध्वज फहराएंगे और देश और दुनिया को संबोधित करेंगे। आजादी का ये दिन 15 अगस्त भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित, ना जाने कितने रक्तों से रंजित। ये स्वाधीनता का ही उत्सव नहीं, ये अवसर है माँ भारती के वीर बलिदानियों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने का भी, उन्हें ये विश्वास दिलाने का कि आपके बलिदानों का ऋण हम माँ भारती की सेवा करके चुकाएंगे। ये वीर शहीदों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है, जिनके त्याग और बलिदान से ये प्रतिफल आज हमें मिला। श्रोताओं, माननीय प्रधानमंत्री के वाहनों का काफिला प्रांगण में प्रवेश कर रहा है और यहाँ का पूरा परिदृश्य नई ऊर्जा से ओतप्रोत। माँ भारती का वंदन और वीर बलिदानियों का अभिनंदन करने के इस पावन आयोजन में उत्साह, उल्लास और श्रद्धा का भाव। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन लाहौरी गेट के समक्ष सलामी मंच पर हो रहा है, जहां उनकी अगवानी के लिए उपस्थित हैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, माननीय रक्षा मंत्री राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी। श्रोताओं, सलामी मंच के सामने तीनों सेनाएं और दिल्ली पुलिस तथा नौसेना बैंड वादकों का दस्ता, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सलामी देने के लिए सभी मुस्तैद। दस्तों के पृष्ठभाग में लगा है तीन रंगों में बैनर, जिस पर झलक है विकसित भारत और विविध भारत की। अंतर सेना सम्मान गारद का जिम्मा इस बार थल सेना को दिया गया है, कमान है लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह के हाथों। और सलामी मंच के दोनों ओर खड़े हैं कैप्टन बीके मेहता और प्रथम नेगी। प्रधानमंत्री के वाहनों का काफिला पहुंचा है सलामी मंच के पास और

0: माननीय प्रधानमंत्री अपने वाहन से उतरते हुए लाल रंग का साफा और ब्राउन यानी भूरे रंग की सदरी, सफेद रंग का कुर्ता पैजामा माननीय प्रधानमंत्री श्री राजनाथ सिंह, श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री और रक्षा सचिव का अभिवादन स्वीकार करते हुए और रक्षा सचिव जीओसी दिल्ली एरिया राजेश सेठी से परिचय कराते हुए अब माननीय प्रधानमंत्री पहुंचे हैं सलामी मंच की ओर, जहां उन्हें अंतर सेना पुलिस सम्मान गारद सलामी देगी कमान लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह के हाथों में।
1: अंतर सेना पुलिस सम्मान गारद।

0: कमांडर के नेतृत्व में टुकड़ों की सलामी। भारतीय सैन्य बलों के पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन लाल किले की इस प्रांगण में। अब संयुक्त कमांडर सलामी मंच की ओर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री जी से सम्मान कर टुकड़ियों का निरीक्षण करने के लिए आग्रहपूर्ण अनुमति लेंगे। सधैव कदमों से हाथों में तलवार लिए और जोश भारतीय सैन्य बलों का जो झलक रहा है। प्रधानमंत्री जी ने सहमति दी और सलामी मंच से नीचे उतरते हुए मंच के बाईं ओर से बिछा है रेड कार्पेट, जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री के स्वागत में अपनी लालिमा से इस स्थल को और गौरव प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री के दाईं ओर दो कदम पीछे हाथों में तलवार और भारतीय सैन्य बलों का शौर्य लिए चल रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह। प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं नौसेना बैंड दस्ते के पास। बैंड मास्टर डी सेल्वम के नेतृत्व में नौसेना का ये बैंड आनंद लोके की धुन बजाएगा, जिसे तैयार किया बैंड मास्टर जे रोड्रिक्स ने, और बच्चों की आवाजें आप सुन पा रहे हैं। यहां मौजूद उपस्थित बच्चे माननीय प्रधानमंत्री का अपनी आवाज से स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री के अब का आगमन हुआ है थल सेना की टुकड़ी के पास। 25 जवान नेतृत्व मेजर आदित्य शर्मा के हाथों में। प्रधानमंत्री के समक्ष पूरी नम्रता लेकिन अभिमान का अभामंडल देश के वीर सैनिकों के मुख पर। विश्वास दिलाते हुए मां भारती की रक्षा में सदैव तत्पर। नौसेना की कमान लेफ्टिनेंट कमांडर अरुण कलमाड़ी के हाथों में। तीनों सेनाएं देशवासियों को विश्वास दिलाती हुई, हम है भारत के प्रहरी, हम है मां भारती के सेवक और रक्षक। और अब प्रधानमंत्री वायुसेना के दस्ते के समक्ष 24 जवानों की टुकड़ी भारतीय वायुसेना का प्रतिनिधित्व 80वें स्वतंत्रता दिवस पर करती हुई कमान स्क्वाड्रन लीडर विपिन कुमार के हाथों में। दिल्ली पुलिस का नेतृत्व एडिशनल डीसीपी विनीत कुमार कर रहे हैं। सभी ने अपने भावों से माननीय प्रधानमंत्री को विश्वास दिलाया मां भारती के रक्षक सदैव तत्पर। और अब लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह परेड कमांडर माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद प्रकट करते हुए। और अब लाहौरी गेट से माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं समारोह स्थल लाल किले की प्राचीर की ओर, जो 1947 से हर वर्ष केंद्र बना है भारत के स्वाधीनता उत्सव का। प्रधानमंत्री के साथ हैं जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी। लाहौरी गेट, लाल किले की प्राचीर और दोनों गुंबद साक्षी हैं भारत के स्वाधीन होने, विकासशील से विकसित बनने के अमृतकाल के। स्वाधीन 79 वर्षों में भारत ने अपने विकास की लंबी यात्रा तय की है श्रोताओं। 2026 का भारत विश्व पटल पर भी अपनी छाप छोड़ रहा है। भारत के विचार दुनिया के लिए मायने रखते हैं, जो समाधानों के लिए आज भारत की ओर देखते हैं, क्योंकि भारत की नीतियों के मूल में है वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श और भारत का उत्कर्ष। विकास भी और विरासत भी भारत की विचारधारा, और भारत हमारा प्यारा भारत बढ़ रहा आगे। एक तरफ अपने हृदय में संजो रहा अपने पूर्वजों के बलिदानों को, तो दूसरी ओर माथे पर चंदन की तरह बिठा रहा युवाओं को, जो भविष्य के भारत की गाथा लिखने को तत्पर। एक ओर इंडियन नॉलेज सिस्टम का सम्मान, दूसरी ओर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घोष भी। 80वां स्वाधीनता दिवस अवसर है अपने पूर्वजों को प्रणाम करने का, उनके प्रति श्रद्धावनत होने का, जिन्होंने तन मन और धन से मां भारती की सेवा की। 21वीं सदी का सबल भारत वीर बलिदानियों का ऋणी है, जिनके समर्पण और बलिदान से हमें आज का यह सौभाग्य मिला। और श्रोताओं, मुख्य समारोह स्थल की ओर चलते हैं, लाल किले की प्राचीर पर, जहां 150 वर्ष गौरवशाली 150 वर्ष वंदे मातरम के पूर्ण होने के अवसर पर इस बार पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम की धुन आप सुनेंगे। उसके बाद ध्वज फहराया जाएगा और फिर राष्ट्रगान होगा और प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। और विवरण के लिए हम लाल किले की प्राचीर कमेंट्री बूथ पर लिए चलते हैं अपने साथी कमेंटेटर नीलम और जैनेन्द्र के पास।
1: धन्यवाद देवेंद्र। साथियों, कुछ ही देर में ये पावन और ऐतिहासिक क्षण आएगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहां पर ध्वज फहराने के लिए लाल किले की प्राचीर पर बने ध्वज स्थल की ओर आएंगे। जैसे ही प्रधानमंत्री जी ध्वज स्थल पर पहुंचे

0: तब भारतीय सेना का बैंड वंदे मातरम की धुन बजाएगा। अपने राष्ट्रगीत के सम्मान में हम सावधान मुद्रा में खड़े होंगे। प्रधानमंत्री जी भारत माँ की अस्मिता के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को जब फहराएंगे तब राष्ट्रगान होगा, साथ ही तिरंगे को सलामी भी दी जाएगी। आर्मी सिग्नल कोर से कैप्टन रितिका खरेटा माननीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग करेंगी। ध्वज फहराने में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और साथ ही भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर आकाश से झंडा वंदन करते हुए पुष्प वर्षा करेंगे। ध्वज फॉर्मेशन का नेतृत्व करते हुए कमान अधिकारी विंग कमांडर ऋषिकांत के साथ को पायलट स्क्वाड्रन लीडर मोहित सिंह राष्ट्रीय ध्वज वहन किए हुए आएंगे। दूसरा हेलीकॉप्टर वंदे मातरम का ध्वज लिए हुए आगे बढ़ेगा और स्क्वाड्रन लीडर पुनीत यादव पुष्प वर्षा करेंगे, इस तरह से अपनी ओर से झंडा वंदन भी करेंगे और साथ ही यहां बैठे उत्साहित देशवासियों पर भी पंखुड़ियां जब गिरेंगी तो वो दृश्य देखने लायक होता है। बच्चे बेहद उत्साहित हो जाते हैं इसे देखते हुए और आप जानते ही हैं कि अब राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों के सम्मान में हम सावधान मुद्रा में खड़े होते हैं। इस तरह से अपने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों को, राष्ट्र को प्रेरणा देने वाले इन गीतों को हम सम्मान देते हैं। मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, भगत सिंह की फांसी, मैं बापू की अंगड़ाई हूँ, हूँ जलियांवाला बाग भी मैं, पानीपत का पानी हूँ, ऊधम की पिस्तौल भी मैं, झांसी वाली रानी हूँ, रंग दे बसंती चोला मैं, गुरु गोविंद सिंह का बलिदान हूँ, चेतक की हुंकार में ही मैं राणा प्रताप की शान हूँ, मैं छुपा बोस किनारों में, मैं जंग लगी तलवारों में, मैं इनकलाब की बोली हूँ, आजाद की आखिरी गोली हूँ, मैं भारत का हर भाव चंगा हूँ, मैं सबका पूज्य तिरंगा हूँ। इसी तिरंगे के सम्मान में पूरा आयोजन यहाँ का हो रहा है और यहाँ पर जो सलामी गारद है वो भी जब राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा उस समय राष्ट्रीय सलामी देगी
1: निश्चित रूप से और सभी को उस पल की प्रतीक्षा है। श्रोताओं, लाल किले के प्राचीर से जब हमारी दृष्टि सामने इस पूरे क्षेत्र की तरफ जाती है, चांदनी चौक की तरफ जाती है, तो अनायास ही बहुत सारे ऐसे इतिहास के पन्ने अपने आप सजीव होने लगते हैं जो हमारे पूरे राष्ट्र के लिए, देश के लिए संघर्ष का एक बहुत कठिन दौर रहा है जिससे देश गुजरा है। धर्मांधता और बलपूर्वक धर्मांतरण के वो विभत्स और क्रूर घटनाएं दृश्य आंखों के सामने सजीव होने लगते हैं। आपको मालूम ही है लाल किले के प्राचीर के सामने चांदनी चौक में ही स्थित है गुरुद्वारा सीसगंज। सन 1675 में 24 नवंबर की वो तारीख थी जब यहीं हमारे नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर का सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। गुरु साहब ने बलिदान से पहले, गुरु साहब के बलिदान से पहले उनके शिष्य भाई मतीदास, भाई दयाला और भाई सतीदास के ऊपर भी बर्बरता भला कौन भूल सकता है। देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में भी ये दिल्ली स्थित चांदनी चौक एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक केंद्र रहा है। 1857 की क्रांति का दमन करने के लिए ब्रिटिश सेना ने यहाँ की मुख्य सड़कों और कोतवाली के आसपास के क्षेत्रों में अपना दमन चक्र चलाया। क्रांतिकारियों को खुलेआम फांसी दी गई। 1857 में आपको याद होगा ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने वाले जिन्हें दिल्ली का आयरन वॉल कहा जाता था, बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह को 9 जनवरी 1858 में 32 साल की मात्र उनकी उम्र थी तब उनको इसी चांदनी चौक में फांसी पर लटकाया गया था खुले में। 23 दिसंबर 1912 को जब ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली को राजधानी बनाने के उपलक्ष्य में इसी चांदनी चौक से होकर शाही जुलूस निकाल रहा था तब यहां घंटाघर के पास क्रांतिकारियों ने उस पर बम फेंका और उस हमले की योजना राजबिहारी बोस ने बनाई थी। उसमें मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी बाल मुकुंद जी और बसंत कुमार विश्वास जैसे क्रांतिकारी शामिल थे। बाद में बाल मुकुंद और बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई थी जबकि राजबिहारी बोस वेश बदलकर देश से बाहर निकल गए और जापान पहुंचकर आजाद हिंद फौज की स्थापना की और उसके आगे का इतिहास आप सबको विदित है। सन 1915 से 1934 के बीच महात्मा गांधी ने चांदनी चौक में कई ऐतिहासिक बैठने की थी। यहाँ की मारवाड़ी पब्लिक लाइब्रेरी हो, गांधी मैदान हो, ये सब क्रांतिकारियों और देशभक्तों की बैठकों का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। अंग्रेजों के दमनकारी कानून रॉलट एक्ट के को लेकर जब देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे तब 1919 में ही स्वामी श्रद्धानंद जी ने चांदनी चौक के घंटाघर पर पुलिस की संगीनों के सामने खड़े होकर निडरता से रॉलट एक्ट का विरोध किया था। कोतवाली के सामने का जो क्षेत्र है इसी चांदनी चौक की एक गली में क्रांतिवीर स्वतंत्रता संग्राम के पर्चे और बुलेटिन चुपके चुपके छापा करते थे और पूरे शहर में बांटकर स्वतंत्रता की अलख जगाया करते थे। यहाँ चाहे वो कटरा नील हो, खारी बावली हो, दरीबा कला हो, इन सभी क्षेत्रों के व्यापारी और आम नागरिक भी इस लड़ाई में

0: शामिल थे। और इस समय जबकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आगमन के साथ जब शुरू होगा यहाँ का मुख्य आयोजन और वंदे मातरम के स्वर गूंजेंगे, उसकी उत्कंठा में और उल्लास में बहुत बड़ी संख्या में जो यहाँ उपस्थित जनसमुदाय है, विशेष रूप से बच्चे अपने अपने स्थान पर खड़े होकर हाथ हिला रहे हैं। प्राचीर की तरफ देखकर उनके उत्साह और उमंग की अभिव्यक्ति उनके चेहरे पर साफ नजर आती है। और जो पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं, उनके स्वर, उनकी पहचान और उनकी आभा जो व्यक्तित्व की है वो भी बहुत आकर्षित कर रही है।
1: बिल्कुल जानेंद्र जी, और मैं देख पा रही हूँ कि बच्चे जो हैं वो बार बार टुकुर टुकुर निहार रहे हैं यहाँ ध्वज स्थल की ओर, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पूरे विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय और सम्मानित प्रधानमंत्री जी का आगमन होने जा रहा है। साथियों, आज का दिन हम अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए, उनकी स्मृति को नमन करने के लिए भी विशेष तौर पर मनाते हैं। विशेष तौर पर आज का दिन हमें ये अवसर देता है, क्योंकि हम जानते हैं तुम न समझो देश को स्वाधीनता यूं ही मिली है, हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है। स्वतंत्रता संग्राम के चिर परिचित सेनानियों के साथ ही गुमनाम नायकों के प्रति आज कृतज्ञता का भाव है, तो आजाद भारत के उन वीरों का गुणगान भी है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन किया है। मंगल पांडे की पहली चिंगारी से लेकर रानी लक्ष्मीबाई का दम्य साहस, सब कुछ हमें प्रेरित करता है। और हम देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है, इस समय ध्वज

0: और इस समय आकाश आकाश में जो स्वर हमें सुनाई दे रहे हैं, ध्वनि सुनाई दे रही है, वो उन हेलीकॉप्टर्स की है जो पुष्प वर्षा करते हुए लाल किले के प्राचीर के ऊपर से गुजर रहे हैं और लोगों की निगाह उसी आसमान की तरफ है। एक हेलीकॉप्टर ये मी 17 हेलीकॉप्टर्स हैं भारतीय वायुसेना के, जिसमें एक हेलीकॉप्टर में राष्ट्रीय ध्वज उसमें दिखाई दे रहा है हवा के साथ अठखेलियां करता हुआ, और दूसरे हेलीकॉप्टर में नीचे लिखा है वंदे मातरम और पुष्प वर्षा करते हुए ये सभी यहां से हमारी बाईं तरफ से दाहिनी तरफ आसमान में आगे बढ़ते हुए बच्चों के बीच खासतौर पर उल्लास और फूलों की पंखुड़ियां यहां चारों तरफ बिखरी दिखाई देती है। खासतौर पर जो सफेद वेशभूषा में बच्चे बैठे हुए हैं वहां ठीक सामने उनके कपड़ों पर सफेद रंग पर जो पुष्प है पंखुड़ियां है पीले रंग की वो बहुत ही खूबसूरत बहुत ही आनंदित करने वाली लग रही है।
1: और जनेंद्र किस तरह से बच्चे उल्लासित होकर प्रधानमंत्री जी को भी निहार रहे हैं और उनकी कोशिश है कि एक दो पंखुड़ी को वो कैच कर पाए और ये पंखुड़ियां इस समय हमारे बूथ की ओर भी आई, बेहद रमणीय दृश्य है ये
0: जी। और राष्ट्रीय सलामी कारत अब राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के बाद और राष्ट्रीय सलामी देने के बाद यहां से प्रस्थान करती हुई सेना कमांड कुमायूं रेजिमेंट सेंटर जो इसमें शामिल थे, जिसने आज पहली बार ये इतिहास रचा गया स्वतंत्रता दिवस के आयोजन में पहली बार यहां राष्ट्रगीत वंदे मातरम की धुन बजी, लेकिन सस्वर यहां उपस्थित हजारों लोगों ने उस गीत को अपने मुखार बिंदु से गाया है, चाहे वो प्राचीर के ऊपर बैठे हुए हमारे सभी अतिथियों दर्शक दीर्घाओं में या ठीक सामने हमारे बाई और दाहिनी तरफ बड़ी संख्या में जो दर्शक दीर्घा में हजारों की संख्या में देश भर से पधारे हमारे दर्शक हैं, विशेष मेहमान हैं, दिल्ली वासी हैं, अलग अलग प्रदेशों के और केंद्र शासित प्रदेशों के वासी हैं, उन सबने अपने वेशभूषा में जिसमें बहुत सारे लोग हैं पारंपरिक वेशभूषा में खड़े होकर बड़े गर्व के साथ इस बार पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया। इस समय परेड कमांडर मेजर लोकेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में राष्ट्रीय सलामी गारद जो है हमारी दाहिनी तरफ जो उनका स्थल है इकट्ठे होने का वहां आगे की तरफ लाल किले के प्राचीर से ज्ञानपथ से होते हुए यहां से प्रस्थान करते हुए और आतुरता से यहां उपस्थित हजारों की संख्या में उपस्थित जनसमुदाय, देश के 145 करोड़ जनता और दुनिया भर के लोग आतुरता से इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लाल किले की ये प्राचीर जिसने पिछले 12 वर्षों में विकास के नए नए प्रतिमानों का बीजारोपण जहां से हुआ है लाल किले के प्राचीर से, और इस प्राचीर से विकसित भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचने और जन जन की प्रेरणा प्राप्त करने का अवसर मिला है। राष्ट्र को जब प्रधानमंत्री महोदय संबोधित करते हैं तो उसे सभी सुनते हैं, सभी प्रेरणा लेते हैं, सभी उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि आज राष्ट्र की प्रति सोच, राष्ट्र के प्रति हमारी संवेदनाएं अपनी गहनता के शिखर पर हैं, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, विकसित भारत बनना है। श्रोताओं,
2: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम सब 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम के नाद से गूंज रही है। आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है, और देश उत्साह और उमंग के साथ नए संकल्पों को लेकर के आज आगे बढ़

0: रहा है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश आज उन महान सपूतों का स्मरण करती है
1: जिन्होंने देश की आजादी के लिए त्याग
0: बलिदान की
1: पराकाष्ठा अपने तप त्याग और बलिदान से आजादी के एकमात्र लक्ष्य को लेकर के अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। पूज्य बापू समेत सभी स्वातंत्र सेनानियों को बलिदान की महान परंपरा जगाने वाले महान क्रांतिकारियों को आज मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज जो इस समारोह में उपस्थित है उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए। उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है तब अपनी सिद्धियों को प्राप्त करता है जब अपने सपनों अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं है, हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं, हमारी सोच की क्षितिज को विस्तृत करते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे संकल्प भी ऊंचे होने चाहिए, क्योंकि जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं, तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है, और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत में भी

एक बहुत बड़ा सपना देखा है, दृढ़ संकल्प के साथ देखा है, नई ऊंचाइयों को छूने के लिए देखा है। और वो सपना है, जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे, 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है, तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है। दुनिया हमारी तरफ देखने का नजरिया बदलने के लिए मजबूर हो जाती है। प्यारे देशवासियों, और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ, समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता हूं, और उसी का परिणाम है कि इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले हैं। इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल 5 में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं। साथियों, देश आजाद हुआ, बहुत सारे सपने लेकर के आजाद हुआ, लेकिन हम गति नहीं पकड़ पाए, रफ्तार नहीं पकड़ पाए। होती है, चलती है, अरे हो जाएगा, देखा जाएगा, उसी में खोए रहे। 2014 तक आते आते तो पूरे विश्व ने हमें फ्रेजाइल 5 के उस में डंप कर दिया था। ऐसे समय पिछले 12 साल में भारत ने एक नई रफ्तार पकड़ी है, तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। और देशवासियों का संकल्प है कि अब 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को, सामर्थ्य को रोकना नामुमकिन है। प्यारे देशवासियों, पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना हुआ, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। इतना ही नहीं, आधुनिक युग को देकर के भी, डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट कंज्यूमर करीब करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़े, सामान्य मानवी की सुविधाओं की तरफ भी हमने उतना ही गंभीरता से काम किया। हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए, हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए, हर साल 4 गुनी रफ्तार

से गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने का काम किया, हर साल 3 गुना ज्यादा तेजी से गरीबों को घर देने का काम किया। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया, हजारों की संख्या में कंप्लायंसेस खत्म किए, सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए। पिछली शताब्दी के कानूनों से 21वीं शताब्दी की मार्च नहीं हो सकती है। हमने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेट्रो का विस्तार किया, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ताकत दी। जिस स्पीड से काम, जिस स्केल पर काम किया, ये सब, ये रफ्तार, ये विस्तार, ये अचीवमेंट आजादी के बाद पहली बार पिछले एक दशक ने देखा है। और जब इतनी सारी सिद्धियां हमारे सामने हो, इतनी तेज गति दिखाई देती हो, देशवासियों का सामर्थ्य पल पल प्रकट होता है, तब तो 2047 में विकसित भारत बनने का संकल्प कभी भी अधूरा नहीं रह सकता है। ये सारे आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि हम आगे बढ़ने वाले हैं, मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन उसके लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है, आत्मगौरव की जरूरत होती है, और साथ साथ आत्मनिर्भर भारत होना भी बहुत जरूरी होता है। और इसलिए बीते वर्षों में हमारा कन्विक्शन रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता है, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है। और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, अपने हितों की सुरक्षा हमें खुद को करनी है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प बहुत दृढ़ता के साथ हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेक इन इंडिया, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, इन सारे क्षेत्रों में आज हर भारतीय का मन जुड़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं सेमीकंडक्टर का। देश आजाद होने के बाद विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी थी, हमारे यहां भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है? आज की डिजिटल दुनिया में, आज की टेक्नोलॉजी में चिप का महात्म्य हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है। और इसे, इस चिप के बिना दुनिया थम जाए, ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है। और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लान, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लान, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं। और मुझे बताया गया है कि वहां जो प्रोडक्शन हो रहा है वह एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, आने वाले 7-8 वर्ष में और 5, 7 या 8 सेमीकंडक्टर प्लांट बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं। ये आत्मनिर्भर भारत हमें विकसित भारत की दिशा में जाने का महामार्ग देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, वैसी ये चर्चा क्रिटिकल मिनरल की हो रही है। पूरी टेक्नोलॉजी
क्रिटिकल मिनरल पर निर्भर है, भारत इसमें भी अपने आप को सुरक्षित करने में जुटा हुआ है। कि क्रिटिकल मिनरल का लक्ष्य साझा किया जाए, नेशनल क्रिटिकल मिनरल ये हमने लॉन्च किया। बजट में क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर की हमने घोषणा की है। कई देशों के साथ एग्रीमेंट हो रहे हैं, विश्व के कई देश अब इस क्रिटिकल मिनरल के विषय में भारत के पर भरोसा करने लगे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जैसे सेमीकंडक्टर की बात हो, क्रिटिकल मिनरल की बात हो, वैसे ही जिस टेक्नोलॉजी की दिशा में हम जा रहे हैं, दुनिया जा रही है, उसमें एनर्जी का महत्व और बढ़ता चला जा रहा है। अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है, और इसलिए हमें चीप हो, एआई हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है, और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इसी एक दशक में हम 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इस वर्ष भारत ने फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करके एक अहम पड़ाव पार किया है, और उसके कारण परमाणु ईंधन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हमें एक बहुत बड़ा सफलता का कदम हमने रखा है। मेरे प्यारे देशवासियों, कई बार संसाधनों की कमी के कारण देश रुकता नहीं है, लेकिन रुकने का कारण सोच की सीमाएं होती है। जब सोच बंद जाती है, सीमाओं में सड़ने लग जाती है, तब हम अपने सामर्थ्य को भी पहचान नहीं पाते हैं। देश को आज कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ रहा है, और हमारी गलत सोच के कारण है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, हमने समुद्री तट पे 99% हमारा समुद्री तट का पूरा हिस्सा ऐसी सोच के कारण नो गो एरिया घोषित करके रखा। हमने ही समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र्य था, हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को, जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया है। और अब हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले वर्ष उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखते हुए समुद्र मंथन की घोषणा की थी, और पिछले दिनों हमने 85,000 करोड़ रुपए इस काम के लिए आवंटित करके काम को गति देने का निर्णय कर लिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, एनर्जी सिक्योरिटी, इसका मैंने कहा कि हमें अल्टरनेट स्रोतों की तरफ भी पूरी शक्ति लगाना बहुत जरूरी है, और इसलिए ऊर्जा का सही इस्तेमाल बढ़ाते हुए

विस्तार 2014 के पहले मुश्किल से 20-22 लाख घरों में पाइप से गैस पहुंचता था। आज 2.25 करोड़ घरों में पाइप से गैस पहुंचाने का काम हो रहा है। 12 वर्ष पहले देश में सोलर एनर्जी की कैपेसिटी सिर्फ 2 गीगावाट थी। 2 गीगावाट आज 160 गीगावाट हमने प्राप्त किया है लक्ष्य। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं एक और जानकारी देता हूं। हमने इसका लाभ देश के मध्यम वर्ग को, सामान्य परिवार को मिले, इस तरफ भी उतना ही ध्यान केंद्रित किया। हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना चालू की और आज मुझे संतोष है कि इतने कम समय में 50 लाख घरों का सोलर एनर्जी का काम हम आंकड़ा पार कर चुके हैं। तेजी से चल रहा है और इसके कारण हजारों घरों का बिजली बिल जीरो हो गया है। हजारों घर अपनी बिजली का उपयोग करने से अतिरिक्त बिजली आज बेच करके कमाई कर रहे हैं। हर परिवार को हम इस काम के लिए 80,000 रुपया सरकार की तरफ से एक एक परिवार को मदद दी जा रही है, तब जाकर के हम इस काम को पूरा कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आपको जानकर के हैरानी होगी, ये जो हमारी रेलवे है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हमारे देश में 1925 में शुरू हुआ था। 1925 में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू हुआ, लेकिन 90 साल में, 1925 से लेकर के 90 साल में सिर्फ 30% रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। यानी 90 साल में 30%। हमारी रफ्तार देखिए, लक्ष्य को पाने के लिए हमारी दौड़ देख लीजिए। हमें इन एक दशक के अंदर 100% काम पूरा कर दिया। 90 साल में 30%, 10 साल में 70%, ये होता है काम। और इसके कारण डीजल जो हमें बाहर से लाना पड़ता है उसकी बचत हुई, बिजली से हमारी ट्रेनें चली, पर्यावरण को फायदा होने लगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हम यहां तो नहीं रुके हैं, हम दुनिया के अंदर पीछे रहना नहीं चाहते। पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी, भारत ने ईंधन का एक नया क्षेत्र को भी छू लिया है। देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी है और मुझे खुशी है ये सबसे लंबी ट्रेन है और सबसे ताकतवर ट्रेन है। और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है। प्यारे देशवासियों, पिछले 10-12 साल हम लगातार 2047 के लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ रहे हैं, एक के बाद एक सोपान सिद्ध कर रहे हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि हमें इसमें भी कुछ मुसीबतों का झेलना पड़ेगा। पिछले 10-12 वर्ष में कितने संकटों का सामना करना पड़ा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया था, सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। कोरोना से बाहर निकले, युद्ध की विभीषा की खबरें आने लगी, कहीं यूक्रेन तो कहीं पश्चिम एशिया, हर जगह पर तनाव का माहौल। और पता नहीं भविष्यवेत्ताओं ने तो न जाने क्या क्या घोषणाएं कर दी थी। देश को डराना, देश को भयभीत रखना
देश को चिंतित रखना।

इसी में कुछ लोगों को आनंद आता है, वैक्सीन नहीं मिलेगी, कोविड में लोग बचेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला, वेस्ट एशिया का क्राइसिस आया, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा, सारी दुनिया भर के अफवाहें फैला करके भारत के लोगों को भयभीत करने का, डराने का, चिंता के अंदर डुबो देने का कुछ लोगों को आनंद आ रहा था। लेकिन देश ने देख लिया कि पिछले 10-12 साल की सुविचारित योजनाएं रंग ला रही है और हम इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था, सोचा नहीं था यह संकट आएगा, लेकिन इस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है, हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे। मेरे प्यारे देशवासियों, दुनिया के इन संकटों का प्रभाव हर किसी पर हुआ, हम भी अछूते नहीं। यूरिया के दाम दुनिया में 3000 रुपये पहुंच गए एक बोरी का। आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है। और दुनिया से जो 3000 रुपये में यूरिया का बोरा हमें मिलता है, वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में दे पाते हैं। इतना ही नहीं, डीएपी आज दुनिया में बाजार 5000 पहुंच चुका है, लेकिन मेरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो इसलिए 1350 रुपए में आज भी डीएपी देने का काम हम कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एक समय था जब मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था तो कुछ लोग एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ करके सोचने वाले लोग हमें बता रहे थे ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा, लेकिन दुनिया देख रही है कि पिछले एक दशक में ऐसा लग रहा है कि दुनिया ने ग्लोबलाइजेशन बोलना ही बंद कर दिया है। जहां से ग्लोबलाइजेशन की आवाज आती थी वो बंद सुनाई नहीं देती है। दुनिया का हर देश अपनी अपनी संभालों के मिजाज की तरफ गया है, लेकिन दुर्भाग्य से इस संकट के कालखंड में कुछ लोगों ने अपना रुतबा दिखाने के लिए संसाधनों को वेपनाइज करने का खेल खेला है। दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसको वेपनाइज करने में लगी है, संसाधनों का वेपनाइज, रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चिप्स। इतना ही नहीं, भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है। मुझे और ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भर के मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कैसे करते हैं। और हमारी तैयारियां निरंतर बढ़ती जा रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, दूसरी तरफ आज भारत का प्रोफाइल पूरी तरफ बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया के लिए एक स्वीकृत और सम्मानीय देश के रूप में बन रहा है। भारत के पास स्थिर पॉलिटिकल मैंडेट है, स्थिर सरकार है, भारत का वाइब्रेंट लोकतंत्र है, भारत का मजबूत न्यायतंत्र है और हम सबको दिशा देने वाला भारत का संविधान है। और अब दुनिया हमारे इन सामर्थ्य को पहचानने लगी है और इसलिए 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा एफटीए एग्रीमेंट हो रहा है। अब देखिए कितना बड़ा अवसर आया है। लेकिन मैं ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं ये एक बहुत बड़ा अवसर है और इसलिए खास करके मैं मेरे एमएसएमईस को कहना चाहूंगा कि हमें इस मौके को छोड़ना नहीं है, दुनिया में हमें पहुंचना है।

भारत के उत्पाद की हर चीज विश्व के बाजार में पहुंचे, और चाहे हमारा टेक्सटाइल हो, हमारी मशीनरी हो, हमने दवाइयां हो, हमने मौका छोड़ना नहीं है। लेकिन वैश्विक जो पैरामीटर्स हैं, उस पैरामीटर को हमें पार करना होगा। हमें दुनिया से जो मिलता है उसे अच्छा देना पड़ेगा, दुनिया में जो मिलता है उसे सस्ता देना पड़ेगा। और पंजाब के लुधियाना से लेकर के तमिलनाडु के तिरुपुर तक हमारा टेक्सटाइल सेक्टर दुनिया में पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, केरलम से लेकर के गुजरात और तमिलनाडु से लेकर के बंगाल, ये हमारा समुद्री तट, हमारे मछुआरे भाई बहन आज इस एफपीए के कारण हमारे श्रिप यानी झींगा उसके एक्सपोर्ट की बहुत संभावना बनी है। हमारे सी फूड की दुनिया में पहुंच बनने की संभावना पड़ी हुई है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि हमें इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए, हम आगे चलते हुए, हम इन कामों को पार करने के लिए प्रयास करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने जो भूमिका आपके सामने रखी है उसके पीछे 2047 का लक्ष्य इन मजबूत नींव पर खड़ा है। 2047 विकसित भारत का लक्ष्य हमने पिछले 10-12 साल में देशवासियों ने जो सामर्थ्य दिखाया है उस सामर्थ्य का हिस्सा है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सभी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है और अगला एक चौथाई हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम रुक नहीं सकते हैं, हमारी गति नहीं रुक सकती है, हमारी दिशा तय हो चुकी है, हमें प्राप्त करके रहना है। और इसके लिए हमें अपना वर्क कल्चर बदलना होगा, हमारे वर्क कल्चर को बदलते हुए हमें हमारी सोच को भी बदलना होगा, हमें हमारे काम की गति को भी बदलना होगा। जो काम पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए हैं वो काम हमें आने वाले 5-7 साल में करने हैं। और मेरा भरोसा है मेरे देश की युवा शक्ति पर, मेरे देश के नौजवानों पर, मेरे देश की माताओं को बहनों पर, मेरे देश के किसानों पर, मेरे देश के मजदूरों पर, कि हम इस सपने को साकार कर सकते हैं। और इसलिए हमें रिफॉर्म की गति को भी आगे बढ़ाना है। और जब मैं रिफॉर्म की बात कर रहा हूं, रिफॉर्म नहीं हमारे लिए कंपल्शन है, नहीं रिफॉर्म ये हमारे के लिए कोई बजबड़ है, हमारे लिए रिफॉर्म ये कन्विक्शन है। आउट ऑफ कन्विक्शन हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं और हम आने वाले दिनों में भी नेक्स्ट लेवल रिफॉर्म की ओर बढ़ने वाले हैं। और इसलिए सरकार, समाज, उद्योग, उत्पादक, किसान, हर किसी ने अपनी ट्रेडिशनल व्यवस्थाओं में रिफॉर्म करना पड़ेगा, सोच में रिफॉर्म करना होगा, अपने लक्ष्यों को रिफॉर्म करना होगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, हमें एक निश्चित दिशा में को लेकर के चलना होगा। मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश, भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आवाहन करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा, उनकी शक्ति जोड़ी जाएगी। आने वाले दिनों में जब मैं सप्त धारा की बात करता हूं, सप्त धारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत
आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे पुर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं। पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए और उसे लेकर के जाना। हमें कंपोनेंट भी चाहिए और हमें कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, कंप्लीट प्रोडक्ट भी चाहिए। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसामंद केंद्र बनना होगा। इसके लिए मैं तीन चीजों पर विशेष जोर देना चाहता हूं। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो मेरे भाई बहन हैं, यह समय का यह अवसर है, इस अवसर को जाने मत दें और इसके लिए हमें कॉस्ट, क्वालिटी और स्केल, इसके विषय में वैश्विक मानदंडों से खरा उतरना पड़ेगा। हमारी फैक्ट्रीज कॉम्पिटिटिव हो, हमारे प्रोडक्ट्स यूजर फ्रेंडली हो, हमारा पैकेजिंग दुनिया के लोगों को लुभावने वाला हो, आकर्षित करने वाला हो, हमारा जीरो डिफेक्ट प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग, ये हमारी पहचान बनना चाहिए। हर मैन्युफैक्चरर, हर एंटरप्रेन्योर, हर एमएसएमई से मैं कहना चाहता हूं, ग्लोबल मार्केट में हमारी पहचान विश्वसनीयता और गुणवत्ता के आधार पर होनी चाहिए, क्वालिटी के संबंध में नो कॉम्प्रोमाइज। और इसलिए हमारा मंत्र क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी होना चाहिए, यही हमारा ग्लोबल ब्रांड वैल्यू बनेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसानों ने, अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं, एफपी के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है, हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है, हमें खेत से लेकर एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा। हमारे पारंपरिक खान पान हो, हमारे मिलेट्स हो, हमारे मसाला हो, हमारे फल हो, फूल हो, क्या कुछ नहीं है हमारे पास, वो ग्लोबल ब्रांड्स बनने चाहिए। हमारे किसान केमिकल फ्री खेती को बल देंगे, दुनिया में इनकी मांग और बढ़ने वाली है। और जो ग्लोबल पैरामीटर्स के अंदर हर प्रकार से सिद्ध होने वाले हमारे एग्रो प्रोडक्ट होंगे, तो दुनिया में हम आसानी से पहुंच पाएंगे। मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है, पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मनवा लिया है, हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है। अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजीज, उसको भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। भारत को नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लीड करना है। मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए और हमें उसमें तेजी करनी चाहिए और इसके लिए हमारा प्रयास कम नहीं होना चाहिए। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। यह गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा। मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलैंड वाटरवेज चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की व्यवस्था चाहिए। हमें पोर्ट को सिर्फ सामान उतारना चढ़ाने की जगह नहीं, दुनिया के शिप्स आकर के लंगर हो जाए इतना नहीं, हमें हमारे पोर्ट्स को पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। और ये रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है। मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना
अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है, इसके बिना कोई चारा नहीं है। विश्व जब अपनी अपनी ही सोच रहा है तब भारत विश्व के लिए बाजार बन करके नहीं रह सकता है। हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना होगा, नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है। हमें ड्रोन काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज उस पर हमें लीडरशिप लेनी होगी। साथियों, साइबर सुरक्षा भी आज हर घर के लिए एक समस्या बन रही है, वो भी एक रक्षा का क्षेत्र है जिसमें हमारे युवाओं की जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का उपयोग हम देश के और दुनिया के लिए कर सकते हैं। हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, इन ग्लोबल स्केल हमें पा करके रहना है। हमें दुनिया में, दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है, हम रास्ते खोजते रहते हैं, हम समस्याओं का समाधान दे रहे हैं और भारत ये ग्रीन मूवमेंट का बहुत बड़ा सामर्थ्य लेकर के चलिए। भारत के पास ब्लू इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा लंबा हमारा कोस्ट लाइन है, ब्लू इकोनॉमी के लिए बहुत बड़े अवसर है, फिशरीज है, कोस्टल टूरिज्म है, ओशन टेक्नोलॉजी है, ऐसे कितने ही क्षेत्र हैं जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत सप्तधारा की जब बात करके चला है तब हमारी सातवीं धारा है और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। आज योग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है, योग दुनिया के लिए एक ऊर्जा बनता जा रहा है, भारत के लिए विश्वास का बड़ा कारण बनता जा रहा है। जिस भारत के पास आस्था के केंद्र हो, जिस भारत के पास आयुर्वेद हो, जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो, हील इन इंडिया का मूवमेंट हो, हम दुनिया के अंदर हमारे सामर्थ्य को लेकर के जा सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट हो, संस्कृति हो, हमारी फिल्में हो, हमारा क्रिएटिव वर्ल्ड हो, वीएफएक्स हो, हमारा एनिमेशन हो, हमारे गेमिंग हो, डिजिटल कंटेंट हो, क्रिएटिव वर्ल्ड के अंदर भारत अपना रुतबा दिखा सकता है। हमने उसको वैश्विक सामर्थ्य के रूप में विकसित करना होगा। आज भारत ने वेव समिट को एक बहुत बड़ी ताकत दी है। दुनिया धीरे धीरे भारत का ये जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है उसकी राह देखता रहता है और वो भारत के सॉफ्ट पावर को, भारत के क्रिएटिव दुनिया को परिचित करेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के पास विशाल वन्य संपदा है, हमारे पास 100 से ज्यादा नेशनल पार्क है, क्षमता बहुत है लेकिन विदेशी टूरिस्टों को आकर्षित करने में हम कम पड़े हैं। हमें मौका है हमारे सॉफ्ट पावर के माध्यम से दुनिया के टूरिस्टों को भारत के लिए आकर्षित करने का, हमारा सामर्थ्य हमें दुनिया को दिखाना है। हम ये काम आरा से करें और हम जल्द से जल्द हम इन लोगों को आज दुनिया में स्पोर्ट्स की जो है वो भी एक बहुत बड़ा भारत के प्रति आकर्षण का केंद्र, दुनिया के स्पोर्ट्स इवन भारत में क्यों ना हो, कॉन्सेंट इकोनॉमी बहुत बढ़ रही है, देश के नौजवानों का आकर्षण है, विश्व का हर कोई कलाकार चाहता है कभी न कभी भारत की धरती पर अपना कॉन्सेंट करे, ये बहुत बड़ा अवसर है। हमें इसको मोबिलाइज करने के लिए व्यवस्थाएं खड़ी करनी होगी। साथियों, सप्तधारा की सात शक्तियां, सप्त शक्तियां उद्देश्य सिर्फ एक सेक्टर में प्रगति करने का नहीं है, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमें राष्ट्र को जो लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं, जो एम्बिशन लेकर के चल रहे हैं, उस स्केल को हमें पार करने की दिशा में काम करना है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ चीजें मैंने बताई हैं लेकिन मैं इससे भी आगे सोचता हूं, मैं जरा देश को झकझोरना चाहता हूं, मैं देश की शक्ति को भी झकझोरना चाहता हूं। देश यानी सिर्फ सरकार नहीं होती है, देश यानी हर नागरिक जुड़ता है। क्या हम सोच नहीं सकते
कि फॉर्च्यून 500 की चर्चा तो बहुत सुनते हैं,

आने वाले एक दशक में इन फॉर्च्यून 500 में 50 कंपनियां भारत की क्यों न हो, ये लक्ष्य हमारा क्यों न होना चाहिए। आज बैंकिंग सेक्टर फल फूल रहा है, दुनिया की टॉप बैंक के अंदर भारत की बैंक का झंडा भी क्यों न फहरता हो, भारत की बैंक भी टॉप बैंक 5 बैंक में भारत की भी एक बैंक होनी चाहिए। भारत की फार्मा की दिशा में हमने बहुत काम किया है, लेकिन समय की मांग है कि दुनिया की 5 बड़ी फार्मा कंपनियों में भारत की भी 1-2 फार्मा कंपनियों का नाम गूंजना चाहिए, भारत उसमें अपना स्थान बनाना चाहिए। लॉ फर्म्स होते हैं, रेटिंग एजेंसी होती है, क्या समय की मांग नहीं है कि ग्लोबल लीडरशिप अब हमारे हाथ में होनी चाहिए? टैलेंट है, सामर्थ्य है, हमारा लंबा इतिहास भी है, भाषाओं पर हमारा प्रभुत्व है, हमें विश्व में पहुंचना चाहिए। हमारी कोई कंसल्टिंग फर्म, अकाउंटिंग फर्म दुनिया के टॉप फर्म्स के अंदर क्यों नहीं होनी चाहिए? भारत की टेक्नोलॉजी कंपनियां दुनिया के अंदर सिरमौर हो, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारे ऐसे ब्रांड हो जिससे दुनिया आकर्षित होती हो, हमारे ब्रांड हमारे देश की पहचान हो और विश्व के लिए एक डेस्टिनेशन बन जाए, उस दिशा में हमें काम करना है। और इसके लिए मैं राज्य सरकारों को कहना चाहता हूं, मैं स्थानीय स्वराज की संस्थाओं को कहना चाहता हूं, भारत सरकार का भी यह दायित्व है कि हमें हमारे रिफॉर्म की गति बढ़ानी होगी, हमें 2047 के लक्ष्य के अनुरूप हमारी व्यवस्थाओं को विकसित करना होगा। हमें बीते हुए काल के नीति नियमों से नहीं चल सकते, हमें आने वाले सपनों के हिसाब से नीति नियमों को गढ़ना होगा। और इसको अगर हम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है और मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, इसी रास्ते मेहनत में कोई कमी न करते हुए हम विकसित भारत का सपना पार करके रहेंगे। हमें सबको मिलकर के चलना है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इंडस्ट्री हो, हम सब ने मिलकर के आगे बढ़ना है। हमें रिफॉर्म्स करते रहना है, रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाते रहना है। और मैंने पहले भी कहा था, हम रिफॉर्म कंपल्शन से नहीं, कन्विक्शन से कर रहे हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है। और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथियों, पिछले 10-12 साल में उस दिशा में बहुत कुछ हुआ है। स्टार्टअप इंडिया अभियान, आज पूरे देश में 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप बन गए हैं। देश के नौजवान खुद तो काम कर रहे हैं, अनेकों को रोजगार दे रहे हैं। 1,00,000 करोड़ रुपया इनोवेशन फंड भारत सरकार ने घोषित किया है। मैं देश को नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपनों को लेकर के आइए, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1,00,000 करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। रिसर्च के नए अवसर मिले, डिजिटल इंडिया के नए सस्ते डेटा, युवाओं को सशक्त किया है। दुनिया में सस्ता डेटा कहीं है तो भारत की धरती पर है, और देश के नौजवानों को उसने नवी ताकत दी है। स्किल इंडिया हमने नेशनल प्रोग्राम बनाया है, स्पेस सेक्टर को हमने ओपन कर दिया, नेशनल ड्रोन पॉलिसी हमने बनाई है, खेलो इंडिया पॉलिसी बनाई है, 35 वर्षों तक एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं, और इसका फायदा मिडिल क्लास के परिवारों को हुआ है। साथियों, 2004 से 14 आंकड़े मुझे देना चाहिए आपको, 2004 से 14 हमारे देश में 350 से भी कम

यूनिवर्सिटी थी और आज 10-12 साल के भीतर भीतर करीब 650 नई यूनिवर्सिटी जुड़ चुकी है। करीब 1000 का आंकड़ा हम पहुंच रहे हैं। 2014 के पहले मेडिकल की सिर्फ 400 सीटें हुआ करती थी, आज करीब करीब 850 सीटें मेडिकल की हो रही है। इतना ही नहीं, अब विदेशी यूनिवर्सिटी भी भारत की धरती पर आ रही है। भारत के अंदर विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री मेरे नौजवान को मिले, इसका प्रबंध भी हो चुका है। हमारे देश के युवा मन बचपन से ही टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और इसलिए हमने करीब 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब छोटे छोटे बच्चों के हवाले कर दी है ताकि उनका इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर उनका मन बने। 12 वर्ष युवा, हमने अनेक रास्ते खोले। हम स्टार्टअप ओपन कर दिया, आपने देखा होगा भारत के प्राइवेट स्टार्टअप 28 साल के एवरेज उम्र के बच्चों ने, नौजवानों ने दुनिया में पहले ही ट्रायल में अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और रॉकेट लॉन्च कर दिया उन्होंने। बहुत बड़ा काम कर दिया साथियों। आज करीब 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है। एक समय था 2014 के पहले सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का बायो इकोनॉमी का काम होता था। मेरे देश के नौजवान, आपने क्या कमाल कर दिया है। देखिए, नीतियां जब सही होती है, लक्ष्य जब साफ होता है तो मेरे देश के नौजवान कैसा करके थे। बायो इकोनॉमी में देश की युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी का, बायो इकोनॉमी 20 लाख करोड़ पहुंच चुकी है। दोस्तों, ₹2009-10 का कालखंड था, सिर्फ 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे 2009-10 में, 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल। इस 25-26 में 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एविएशन सेक्टर भी मेरे नौजवानों के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। नए एयरपोर्ट, नए रूट, नए नए रोजगार के अवसर बना रहे हैं। मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग, इसके भी कारण देश में बहुत बड़ी मात्रा में स्किल मैन पावर को काम मिल रहा है। मेड इन इंडिया हवाई जहाज बनाने की दिशा में हमने सफलता पाई है। मेड इन इंडिया डिफेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 ऑलरेडी अपनी उड़ान भर चुका है, सफल उड़ान भर चुका है। ये देश के नौजवानों के लिए। मेरे साथियों, ड्रोन ने भी बहुत बड़ा काम किया है। स्वामित्व योजना, गांव में ड्रोन से स्वामित्व योजना सफल हो रही है। करीब 3.25 करोड़ परिवारों को स्वामित्व योजना का लाभ मिला है और इसके कारण 140 लाख करोड़ रुपए जैसी संपत्ति अनलॉक हुई है, जिसके कारण बैंक से लोन मिल सकता है, लोग अपना कारोबार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए 1000 करोड़ रुपए का उनका खर्च है, वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ ना आए,
और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले। जब मैं खेले वो खिले की बात कर रहा हूं, तब मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। अब खेल के पोडियम में भारत का राष्ट्रगीत सुनाई देता है, भारत का राष्ट्रगान सुनाई देता है, भारत का तिरंगा झंडा लहराता दिखाई नजर आ रहा है। टॉप्स योजना ने बहुत बड़ी सफलता की है। खेलो इंडिया गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, बीच गेम्स, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स के लिए न्यूट्रिशन, इन सारे विषयों में भारत अब महारत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नौजवानों के लिए पूरा नया क्षेत्र, खिलाड़ी न बन सके तो उसकी सपोर्ट सिस्टम में भी बहुत बड़ा क्षेत्र खुल रहा है। स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का को भारत होस्ट करने वाला है। और मेरे साथियों, दुनिया में जो ओलंपिक की खेल होते हैं, करीब 40 प्रकार के गेम होते हैं और करीब 350-350 स्पर्धाएं होती है ओलंपिक में। और आपको जानकर के दुख होगा मेरे देशवासियों, मेरे नौजवानों, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आह्वान करता हूं, मैं आपकी मदद चाहता हूं। 350 जितने स्पर्धाओं में भारत 2/3 खेलों में कहीं होता ही नहीं, हमारी मौजूदगी नहीं होती, हम क्वालिफाई नहीं होते हैं। हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, हम चाहते हैं कि वो भारत में हो, लेकिन 2036 में जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, जिन स्पर्धाओं में भारत ने छोड़ के रखा है, 3/4 हिस्सा हमारे इंतजार कर रहा है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल 10 साल 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव, शहर शहर, स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे। मेरे प्यारे युवा, देश के सामने, देश के नौजवानों के सामने नशा एक बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। नशा मुक्त भारत, ये हम सबका सामूहिक दायित्व होना चाहिए। हमारे उज्जवल भविष्य के लिए हमारी युवा पीढ़ी मजबूत हो, हमारा युवा सामर्थ्य हमारे देश के लिए काम आए, इसलिए नशा मुक्त भारत। पिछले दिनों माय भारत के वॉलेंटियर्स ने, देश के एनजीओ ने, देश के सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने, देश के आध्यात्मिक पुरुषों ने मिलकर के नशा मुक्त भारत का 100 सप्ताह का एक कार्यक्रम तय किया है। 100 सप्ताह तक एक अभियान चलने वाला है। मैं हर परिवार को कहना चाहता हूं कि आप भी इस अभियान का हिस्सा बने, आप इसके साथ जुड़िए और देश के नशा मुक्त भारत के सपने को पूरा करने के लिए आप आगे आइए। मेरे प्यारे देशवासियों, 21वीं सदी में दशकों पुरानी जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को खत्म करना बहुत अनिवार्य है। नक्सलवाद, माओवाद लाखों युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया,

अनेक माताओं के दुर्बल नौजवानों को छीन लिया, बर्बाद कर दिया, हर माँ बाप के सपनों को चूर चूर कर दिया। इस नक्सलवाद ने चार चार दशक तक हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को, बहुत बड़ी आबादी को दबोच करके रखा था, बंदूक के नोक पर दबोच करके रखा था, संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी और देश के सामान्य नागरिकों की रक्षा में 3,500 से ज्यादा हमारी पुलिस के, सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी ताकि देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा मिले। ये नक्सलवाद ने धरती को लहू लुहान कर दिया था। 2014 में आपने जब हमें मौका दिया, उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे और आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस भी शायद रहने की अब तो ताकत नहीं रही है। पूरी तरह उसे खत्म करने की दिशा में जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में, उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है, मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन इस चुनौती को हमने कम नहीं आंकना है, इस चुनौती से हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे, सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, सुरक्षित भारत बनाना हम सबका दायित्व है। चुनौती सीमा के भीतर हो या सरहद से बाहर, भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। आज युद्ध का नेचर बदल रहा है, अब युद्ध सीमा पर ही होता है, गारंटी नहीं है। आज युद्ध सीमा के अंदर कहीं रिफाइनरी पे जाकर के, कहीं बैंकिंग सेक्टर को जाकर के, कहीं डेटा सेंटर को जाकर के, एक प्रकार से लड़ाई का नया रूप, इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़े जा रहे हैं, फैक्ट्रियां तोड़ी जा रही है। हमने मिशन सुदर्शन चक्र की पिछले सालों घोषणा की, बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है। आज डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा करीब 50 गुना बढ़ा है, करीब 100 देशों में हमारे अस्त्र शस्त्र पहुंच रहे हैं, वैश्विक पटल पर भारत की प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ रही है। बदलते हुए समय में अस्त्र शस्त्र की तरफ काम करना है, सैन्य बलों का सामर्थ्य बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ नागरिकों को भी तैयार करना होगा। पिछली शताब्दी के युद्धों के अनुरूप जो सिविल डिफेंस की व्यवस्थाएं हमारे देश में विकसित हुई है वो कालबाह्य हो चुकी है, और इसलिए मैं आज लाल किले से घोषणा कर रहा हूं कि हम आने वाले दिनों में सिविल डिफेंस का एक वाइब्रेंट नेटवर्क खड़ा करेंगे, आधुनिक व्यवस्थाओं से उनको परिचित कराएंगे, आधुनिक संकटों से नागरिकों को रक्षा करने की क्या व्यवस्था हो सकती है, एक बहुत बड़ा वॉलेंट्री फोर्स सिविल डिफेंस का आधुनिक चुनौतियों को पार करने वाला हम बनाने वाले हैं।

मेरे प्यारे देशवासियों, राष्ट्र के निर्माण में आज हमारी बहनों बेटियों का योगदान हम सबके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का कारण बना हुआ है। फाइटर जेट हो या सिविल एविएशन, हमारी बेटियां सबसे आगे दिखाई दे रही है। खेलकूद का मैदान हो, हमारी बेटियां आगे दिखाई दे रही है। स्टेम एजुकेशन में भर्ती होने की प्रक्रिया हो, सबसे ज्यादा हमारी बेटियां आगे दिख रही है। आज सेना में भी एनडीए से जो बच्चियां निकली हैं, वो बड़े रौब के साथ देश की सेना का नेतृत्व करने का सामर्थ्य दिखाने लगी। सर, मेरी बेटियों की ताकत कैसी है? मैं पिछले दिनों सारण में एक सेमीकंडक्टर प्लांट में गया, वहां आदिवासी बेटियां, देश के अलग अलग कोने से आई हुई बेटियां काम कर रही थी। वो उस गांव से आई थी जिन्होंने पासपोर्ट क्या होता है पता तक नहीं था। वो बेटियां विदेशों में गई, ट्रेनिंग लेकर के आई और आज चिप निर्माण का काम कर रही है और बड़े कॉन्फिडेंस, मैं जो उनका कॉन्फिडेंस देखा, मैं सचमुच में बहुत प्रभावित हुआ था। आज तीन करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया था। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पंचायतों में, नगर पालिका में, महानगर पालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से यह सपना हमेशा राजनीति के अखाड़े का शिकार हो गया है। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता हूं, आगे करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले। ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यस लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। 2014 से पहले सिर्फ 25 करोड़ लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी का कवर था, सिर्फ 25 करोड़ के पास। साथियों, पिछले 5-7 दशक में सिर्फ 25 करोड़, हमने एक दशक के भीतर भीतर 100 करोड़ देशवासियों को सोशल सिक्योरिटी का कवच दिया है। आयुष्मान भारत योजना से 70 साल की उम्र के बुजुर्गों से भी आज 5 लाख रुपए तक मुफ्त दवाई की व्यवस्था हो रही है। करोड़ों करोड़ों परिवारों को इसके कारण बहुत बड़ी सुविधा मिली है और इस आयुष्मान कार्ड के कारण 2 लाख करोड़ रुपया जो दवाई और ऑपरेशन के पीछे खर्च होना था, वो मेरे परिवारों के बच्चे हैं, वो गरीब परिवार है, वो मध्यम वर्ग के परिवार है, उनको इतनी बड़ी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मुझे एक काम के लिए आपकी मदद चाहिए। मैं आप सबसे एक मदद मांग रहा हूं। सभी नौजवानों से मैं चाहता हूं कि आप इसका नेतृत्व करिए। आपका 1 या 2 घंटे देश को बहुत बड़ी शक्ति देने वाले हैं। आपको लगेगा ये 1-2 घंटे में मैं देश की क्या शक्ति, मैं बताता हूं, आप बहुत बड़ी शक्ति बनने वाले हैं और इसलिए हर घर में वातावरण बने। इन दिनों देश में जनगणना का काम हो रहा है, सेंसस का काम हो रहा है,
गिनती चल रही है, और गिनती सिर्फ आंकड़ों से बात बनती नहीं है, उसकी बारीकियों से नीतियां बनती हैं, योजनाएं बनती हैं, देश आगे बढ़ने की अपनी रूपरेखा तैयार करता है, और इसलिए सटीक जानकारियां होना बहुत जरूरी है। कभी कभी जो सरकार की तरफ से प्रतिनिधि आते हैं वो इतनी जल्दी में होते हैं, कभी स्पेलिंग एक लिख देते हैं, कभी अलग लिख देते हैं, और इसके कारण अल्टीमेट परिणाम हमें सही मिलने में दिक्कतें आती हैं। अब जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और इस बार निर्णय किया है, आप स्वयं भी जनगणना में अपनी जानकारियां अपने मोबाइल फोन से भर करके दे सकते हैं। बाद में कोई बाबू आएंगे, कोई प्रतिनिधि आएंगे, आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन आप परिवार के सब बैठ करके अगर डिजिटली अपना रजिस्ट्री करवा दे, सारी बारीकियां, स्पेलिंग में भी गलती ना हो, कोई भी जानकारियों में गलती ना हो, आप जितनी परफेक्ट जानकारी देंगे देश को आगे बढ़ने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और इसलिए मैं देश के नौजवानों कहता हूं कि आप अपने परिवार के लोगों को बिठा करके पूरे फॉर्म को समझिए, पहले कागज पे फॉर्म को भर दीजिए, कोई गलती है तो करेक्ट कर लीजिए, और फिर टेक्नोलॉजिकली उसको डिजिटली इसको अपलोड कर दीजिए। आप देखिए इतना बड़ा काम देश कर लेगा, और देश का समय और शक्ति सही काम के लिए उपयोग आएगा। और इसलिए मेरे देश के नौजवानों को जनगणना के इस काम में सक्रियता से जुड़ने के लिए मैं आग्रह करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने लाल किले से पंच प्राण की बात कही थी, इस पंच प्राण ने देश को अपने आत्मगौरव की ओर लेकर के आगे बढ़ने का, लक्ष्यों को पार करने के सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा संबल दिया है। हमें गुलामी की मानसिकता हर पल मिटाते ही रहना है। जिस भारत का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, पंडित नेहरू ने देखा था, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु ने देखा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, भगवान बिरसा मुंडा ने देखा था, ज्योतिबा फुले ने देखा था, उन सब से प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़े। इस आइए इस संकल्प को हम दोहराएं, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो, और कर्तव्य ही हमारी पहचान हो। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा समय हमारा है, मैं सभी देशवासियों से कहूंगा समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है। आइए सपनों को संकल्प बनाएं, संकल्प को सामर्थ्य बनाएं, और सामर्थ्य को सफलता में बदल के रहें। आइए हर कदम को विकास का कदम बनाएं, कदम से कदम मिलाएं, मन से मन मिलाएं, लक्ष्य से जुड़े रहें, एक दीप से जले दीप हजारों, आओ मिलकर विकसित भारत बनाएं। इसी एक भावना के साथ इस मंगल पर्व पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आपके साथ मैं मुनीश शर्मा। आकाशवाणी समाचार कक्ष की ओर से हमारे सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने संकल्प दोहराया, 2047 तक हम विकसित भारत बनकर रहेंगे। विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा। समुद्र में नए अवसर तलाश करने के लिए नो गो एरिया के स्थान पर गो अहेड एरिया योजना की शुरुआत। ऊर्जा सामर्थ्य के बारे में उन्होंने कहा, हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर भारत ने हाइड्रोजन ऊर्जा की दिशा में झंडा गाड़ दिया है। उन्होंने कहा, सुरक्षित भारत के लिए हमें दिमागी नक्सलियों से निपटना होगा। प्रधानमंत्री ने जनगणना में सटीकता के लिए युवाओं से डिजिटल रजिस्ट्रेशन का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, सरकार परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने रक्षा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज से श्रीलंका के गाले में। और अब समाचार विस्तार से। देश आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र ध्वज फहराया। राष्ट्र को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गूंज रही है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें अपनी कार्य संस्कृति, अपनी सोच और काम की गति को बदलना होगा।
1: जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं, तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश सुधार यानी रिफॉर्म एक्सप्रेस पर आगे बढ़ चला है और अब नेक्स्ट लेवल यानी अगले स्तर के सुधार पर भी हम आगे बढ़ेंगे। श्री मोदी ने विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित व्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा की। उन्होंने गति शक्ति को सप्तधारा की चौथी शक्ति बताते हुए कहा कि निर्बाध और तेज कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा।
1: आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्तधारा का आह्वान करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्तधारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने में संसाधनों की बाधा नहीं होती, बल्कि सोच की सीमाएं बाधा होती हैं। उन्होंने कहा कि आज देश को कच्चे तेल पर निर्भर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश में 99% समुद्र तट को, नो गो एरिया को तेल भंडार की खोज के लिए गो अहेड घोर एरिया घोषित किया जाएगा।
1: हमने समुद्र तट पे समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र था, हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया। हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि हमने दुनिया में हाइड्रोजन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है।
1: देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी और मुझे खुशी है ये सबसे लंबी ट्रेन है और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद देश में सेमीकंडक्टर को लेकर कोई बड़ी योजना नहीं थी। उन्होंने कहा कि आज की डिजिटल दुनिया में हम चिप के महत्व को समझते हैं।
1: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि नक्सलवाद ने 4 दशक तक भारत की आबादी को दबोच कर रखा था। नक्सलवाद से निपटने में 3,500 से ज्यादा जवानों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। श्री मोदी ने देश को नक्सलवाद से मुक्त बनाने का आह्वान किया।
1: ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश

0: की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड जैसी वैश्विक महामारी से पूरी व्यवस्था चरमरा गई थी, लेकिन सभी के प्रयासों से देश को उस संकट से बाहर निकाला गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत नागरिक देवो भव के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है।
0: इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था। सोचा नहीं था यह संकट आएगा, लेकिन उस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है। हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था ने नई रफ्तार पकड़ी है और एक नई गति से देश आगे बढ़ रहा है।
0: इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल फाइव में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत एक बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। जब 2047 में स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होंगे, हम विकसित भारत बनाकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये 140 करोड़ भारतीयों के पुरुषार्थ से ही संभव है।
0: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में आए संकट का हर किसी पर प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा कि हमने किसानों पर यूरिया और डीएपी जैसे उर्वरकों में बड़ी कीमतों का असर नहीं आने दिया।
0: यूरिया के दाम दुनिया में 3000 रुपया पहुंच गए एक बोरी का। आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है। और दुनिया से जो 3000 रुपया में यूरिया का बोरा हमें मिलता है, वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में दे पाते हैं। इतना ही नहीं, डीएपी आज दुनिया में बाजार 5000 पहुंच चुका है, लेकिन मेरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो इसलिए 1350 रुपए में आज भी डीएपी देने का काम हम कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नशा मुक्त भारत के 100 सप्ताह के अभियान से जुड़ने की अपील की। उन्होंने देश के युवाओं से जनगणना में सटीकता के लिए डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराने का आह्वान भी किया। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम का गायन हुआ। इससे पहले प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ा है। ऐसी परिस्थितियों में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी अर्जित कर रहे हैं। उन्होंने भावी पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि सरकार परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। इनमें 13 ऐसे वीर शामिल हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायु सेना मेडल शामिल हैं। सरकार ने टेलीविजन चैनल्स के लिए विज्ञापन की 12 मिनट की समय सीमा को हटाने का फैसला किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में आए बदलाव को देखते हुए विज्ञापन की अवधि से जुड़े नियमों पर फिर से विचार करने की जरूरत महसूस की गई। भारत में पे चैनल या फ्री टू एयर सभी बहुत हद तक विज्ञापनों पर ही निर्भर हैं। भारत और श्रीलंका के बीच दो क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज श्रीलंका के गाले स्टेडियम में खेला जाएगा। ये श्रृंखला 2025-27 के आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल और श्रीलंका टीम के कप्तान धनंजय डी सिल्वा हैं। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ आज तिरंगे की छटा बिखेर रहे हैं। कुछ अखबारों ने देश की उपलब्धियों का उल्लेख किया है तो कुछ ने स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले सैनिकों और रक्षा कर्मियों की गाथाएं सचित्र प्रकाशित की हैं। इसके अतिरिक्त जनगणना प्रक्रिया में पूछे जाने वाले सवालों की सूची को भी अखबारों ने सुर्खियों में जगह दी है। अधिकांश समाचार पत्रों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश को भी मुख्य पृष्ठों पर सुर्खियों में प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों का उल्लेख इस संबोधन में किए जाने को अपना शीर्ष समाचार बनाया है। परीक्षा प्रणाली सुधारने में जुटी सरकार। हिंदुस्तान ने हाल में शौर्य का नया इतिहास रचने वाले रक्षा कर्मियों की वीरता की कहानियां प्रकाशित की हैं। शीर्षक दिया है तिरंगे को दिल दिया देश के लिए जान। नवभारत टाइम्स ने स्वतंत्रता दिवस के आसपास रिलीज हुई फिल्मों का विश्लेषण प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता और दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने जनगणना में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उल्लेख अपने मुख्य पृष्ठ पर किया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय लेख को शीर्षक दिया है अभिव्यक्ति का हक। पत्र का कहना है कि इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि कुछ विद्यार्थियों के सिर्फ असहमति जताने या विरोध जाहिर करने की वजह से उनके समूचे समूह की पढ़ाई के आगे के रास्ते को बंद करने का फरमान जारी कर दिया जाए। पत्र ने नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च के दीक्षांत समारोह में भारत के प्रधान न्यायाधीश को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने पर कुछ विद्यार्थियों के विरोध पर दंडात्मक कार्रवाई का हवाला देते हुए ये भी कहा है कि लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति सजग नागरिकों सहित खुद प्रधान न्यायाधीश की ओर से जैसी प्रतिक्रिया आई वो उम्मीद जगाने वाली है। दैनिक जागरण ने विभिन्न क्षेत्रों में देश की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए विश्लेषण प्रकाशित किया है और शीर्षक दिया है गरीबी से गर्व करने की ओर भारत। जबकि लोकसत्ता ने स्वतंत्रता दिवस के आयोजन को देखते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा जारी यातायात परामर्श को विस्तार से प्रकाशित किया है।
1: अमरीका के सीनेटरों और नेताओं ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा है कि दोनों देशों की भागीदारी मजबूत है और भारत की उपलब्धियां और भारत के लोग विश्व को प्रेरित करते रहे हैं। न्यूयॉर्क से लेकर सिएटल तक अमरीका के राज्यों के गवर्नर और सीनेटरों ने कहा है कि उनके यहां 15 अगस्त का दिन भारत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने संकल्प दोहराया 2047 तक हम विकसित भारत बनाकर रहेंगे। विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में समुद्र में तेल भंडार की खोज के लिए नो गो एरिया को गो अहेड एरिया घोषित किया गया। ऊर्जा सामर्थ्य के बारे में उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर भारत ने हाइड्रोजन ऊर्जा की दिशा में झंडा गाड़ दिया है। सुरक्षित भारत के लिए हमें दिमागी नक्सलियों से निपटना होगा। प्रधानमंत्री ने जनगणना में सटीकता के लिए युवाओं से डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने रक्षा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को अपनी स्वीकृति दी और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज से श्रीलंका के गाले में। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, उद्योगों को मिलकर आगे बढ़ना होगा। और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज से श्रीलंका के गाले में खेला जाएगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी

0: Presents Morning News. Good morning, I'm Sarabjeet Kaur. The headlines. Nation celebrates its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi hoists national flag at Red Fort in Delhi. Addressing the nation, Prime Minister unveils 7-point reform framework or Saptadhara aimed at accelerating India's journey towards becoming Vikasit Bharat by 2047. Mr. Modi says India has set target of 100 gigawatt nuclear energy and set up 5 new reactors. Prime Minister says India has rapidly progressed in the last 12 years with significant progress in digital, manufacturing, infrastructure and social welfare sectors. President Draupadi Murmu says government taking comprehensive steps to curb unfair means in public examinations. President approves 78 gallantry awards, including 13 posthumous for Defence and Central Armed Police Forces personnel. And in cricket, first test of 2-match series between India and Sri Lanka to begin today at Galle. And now the news in detail. The nation celebrates its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi hoisted the national flag at Red Fort in Delhi and addressed the nation. The celebrations this year also commemorates Yuva Shakti, acknowledging the contribution of young India in building a Vikasit Bharat by 2047. Addressing the nation from the ramparts of Red Fort, Prime Minister Modi said that this is the first time since independence that Vande Mataram has resonated from the ramparts of Red Fort.
1: आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है. पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए. उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं. पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं.
0: Prime Minister said a nation becomes great when it moves forward on the strength of its resolve and capabilities.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है. मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं, हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं. हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए. जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है.
0: Mr. Modi said that over the past 12 years, crores of citizens of the country, with their determination and dedication, made every possible effort to take the country to new heights. He said due to these efforts, 25 crore people have come out of poverty.
1: पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि-कोटि नागरिकों ने, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है. मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता हूं और उसी का परिणाम है कि इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को पास करके गरीबी से बाहर निकले हैं.
0: He said India, which was once among the fragile 5 economies, has now emerged as a major and the fastest growing economy in the world. Mr. Modi said that India has set a big goal to become a developed nation by 2047.
1: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे. 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है.
0: Highlighting the achievements made in different sectors, the Prime Minister said, over the past 12 years, defence production has increased nearly fourfold.
1: पिछले 12 वर्षों में defence production करीब 4 गुना, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब

0: 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा, आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया, इंटरनेट यूजर करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजेक्शन 100 गुना बढ़े।
1: He said internet users increased by nearly fourfold and digital transactions by 100 times. Mr. Modi said the NDA government has worked with equal seriousness towards the welfare and amenities for the common man. Prime Minister said energy security is today's need and that's why we have already taken steps in this direction. Mr. Modi said the government is moving forward with the aim of 100 gigawatts of nuclear power capacity by 2047. He added that India has set a target of commissioning 5 new nuclear reactors during the current decade.
0: अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है और इसलिए हमें चीप हो, एआई हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
1: Prime Minister said India has already begun production at 3 semiconductor plants and 5 to 8 more plants are expected to come up in the coming years.
0: देश आजाद होने के बाद विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी, हमारे यहाँ भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लांट हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है? आज की डिजिटल दुनिया में चीप का महत्व हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चीप अनिवार्य है और इसे इस चीप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो। भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुका।
1: Prime Minister said India must move towards self-reliance and not remain dependent on other countries. He asserted that the country needs to strengthen its own capabilities and protect its national interests.
0: बीते वर्षों में हमारा conviction रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है।
1: Mr. Modi unveiled a 7-point reform framework or Saptadhara aimed at accelerating India's journey towards becoming a Vikasit Bharat by 2047. He said work that could not be completed in the past 5 to 7 decades must be achieved within the next 5 to 7 years.
0: मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूँ। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
1: Prime Minister said that government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said this will enable them to take the lead in the global AI sector. Mr. Modi said the country has to focus on 3 things: cost, quality and skill.
0: हमने पिछले दिनों AI Impact Summit किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूँ, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे ताकि हमारा देश का नौजवान AI की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य है। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है।
1: दिस इज आकाशवाणी गिविंग यू द न्यूज। For quick news updates round the clock, follow us on our X handle AIR News Alerts and for

0: and new resolutions.
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए, उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं।
0: Prime Minister Modi said that over the past 12 years, crores of citizens of the country, with their determination and dedication, made every possible effort to take the country to new heights. Highlighting the achievements made in different sectors, the Prime Minister said, over the past 12 years, defence production has increased nearly fourfold, khadi and village industries production grew by nearly fivefold, electronic manufacturing nearly sevenfold, modern railway coach manufacturing 21-fold and mobile phone manufacturing increased by 33-fold. He said internet users increased by nearly fourfold and digital transactions 100 times.
1: हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए। हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए। हर साल 4 गुनी रफ्तार से गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने का काम किया। हर साल 3 गुना ज्यादा तेजी से गरीबों को घर देने का काम किया। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया। हजारों की संख्या में कंप्लायंसेज खत्म किए, सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए।
0: Prime Minister Modi announced to provide free online coaching for poor and middle-class families for various public examinations. He said this is a revolutionary step towards making quality education accessible to everyone, led by top teachers. He said this will save thousands of crore rupees of middle-class families in coaching classes.
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: द प्राइम मिनिस्टर सेड गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट 1 crore यूथ विल बी गिवन ट्रेनिंग इन AI स्किलिंग इन द नेक्स्ट 1 year. He said this will enable them to take the lead in the global AI sector. Mr. Modi said the country has to focus on 3 things, cost, quality and skill.
1: हमने पिछले दिनों AI Impact Summit किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 crore युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान AI की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य है। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है।
0: The Prime Minister highlighted the government's focus on critical minerals, saying the modern technology depends entirely on critical minerals and India is actively working to secure its position in this sector. He said India has launched the National Critical Minerals Mission and announced the Critical Mineral Corridor. Mr. Modi added that agreements are being signed with several countries and nations around the world are increasingly placing their trust in India. Prime Minister Modi said that India has successfully overcome several unprecedented crises while progressing towards the goal of a developed nation by 2047. He recalled the challenges posed by the COVID-19 pandemic and subsequent conflicts in Ukraine and West Asia. The Prime Minister said every nation around the world has turned towards managing and safeguarding its own interests, but unfortunately, during this period of crisis, some nations have played the game of weaponizing resources to flaunt their dominance, be it petrol, diesel and fertilizers.
1: दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसको वेपनाइज करने में लगी है। रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चीप, इतना ही नहीं भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है। और ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भर के मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कैसे कर। और हमारी तैयारियां निरंतर बढ़ती जा रही है।
0: The Prime Minister has urged all parties to support the implementation of women's reservation in the parliament and state assemblies without making it a political fight.
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33%

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। लाल किला पर पहली बार वंदे मातरम का गायन। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल का प्रशिक्षण देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदार के रूप में उभर रहा है। कई देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कुछ देशों द्वारा संसाधनों का दुरुपयोग कर अपना वर्चस्व दिखाने के प्रयासों पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा, भारत आत्मनिर्भरता की भावना से इस चुनौती का सामना कर रहा है। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इंडोनेशिया के पूर्वी तट पर आए 7.7 तीव्रता के भूकंप में 20 लोगों की मौत और गाले में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट में भारत ने 1 विकेट पर 106 रन बनाए। राष्ट्र आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। श्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गुंजायमान हो रही है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि AI शिखर सम्मेलन के आयोजन से भारत ने विश्व को अपनी ताकत दिखाई है। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति AI के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में करोड़ों देशवासियों के संकल्प, समर्पण और हर संभव प्रयास की बदौलत देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने कहा कि पहले भारत 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों में गिना जाता था, लेकिन अब भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है।
1: इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल 5 में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कई बार देश केवल संसाधन की कमी के कारण नहीं बल्कि सीमित सोच के कारण भी पिछड़ता है। उन्होंने कहा कि भारत को कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ा है और ये भी सीमित सोच का परिणाम था। श्री मोदी ने कहा कि जिन अपतटीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के काम की अनुमति नहीं थी, सरकार ने उनमें से 99% को खोल दिया, जहां अब समुद्र के भीतर नए संसाधनों और भंडारों की खोज की जा रही है।
1: हमने समुद्री तट पे समुद्र के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र्य था, हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया। हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 7-8 वर्ष में लगभग 8 सेमीकंडक्टर संयंत्र काम शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि इस समय देश में 3 संयंत्रों में सेमीकंडक्टर का निर्माण हो रहा है और इस क्षेत्र में भारत की प्रगति तकनीकी आत्मनिर्भरता को दर्शाती है।
1: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं।
0: स्वाधीनता दिवस समारोह पर हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद अंतर सेवा और दिल्ली पुलिस के संयुक्त गार्ड ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं पहली बार लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन किया गया। ध्वजारोहण के बाद भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर फूलों की बारिश की। इनमें से एक हेलीकॉप्टर पर राष्ट्रीय ध्वज था और दूसरे पर वंदे मातरम लिखा हुआ ध्वज था। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद NCC कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने वंदे मातरम का गायन किया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। सेना, नौसेना और वायुसेना के कुल 2,500 कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने समारोह में हिस्सा लिया। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5,000 विशेष अतिथियों ने लाल किले पर आयोजित समारोह में भाग लिया। इनमें पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, पीएम मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले, भारत टैक्सी के चालक, स्वच्छ भारत मिशन के सफाई कर्मचारी और राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम से जुड़े युवा शामिल थे। लाल किले पर आयोजित समारोह का समापन आसमान में तिरंगे गुब्बारे छोड़ने के साथ हुआ। अनुपम और आनंद के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। श्री मोदी ने कहा कि सरकार महात्मा गांधी के कार्यों और उनके दृष्टिकोण से सदैव प्रेरणा लेती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक की प्रगति के लिए काम करती रहेगी, इससे देश प्रगतिशील और समृद्ध बनेगा। नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में भी 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने राष्ट्र ध्वज फहराया और हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा यह दिन उन शहीदों को याद करने का दिन है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की जनता से राष्ट्र के विकास में योगदान देने और राष्ट्र को कमजोर करने वाली शक्तियों से दूर रहने की अपील की है। पश्चिम बंगाल में मातृभूमि के प्रति गहरे श्रद्धा के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है।
3: कोलकाता में मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित बंगाल विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे सकता है। रेड रोड परेड में राज्य सरकार की कई झांकियां प्रदर्शित की गईं, जिनमें पीएम सूर्य घर योजना और विकसित भारत जी राम जी योजना जैसी विभिन्न योजनाओं को दिखाया गया। राज्यपाल RN रवि ने बैरकपुर के गांधी घाट पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया और महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। कोलकाता से आकाशवाणी समाचार के लिए कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ मैं कुमार राधारमण।
0: जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्य समारोह श्रीनगर के प्रसिद्ध बख्शी स्टेडियम में आयोजित किया गया।
4: स्वतंत्रता दिवस के हवाले से सबसे बड़ा समारोह श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में हुआ, जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आजकल के हालात अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि आजादी के 80 साल बाद जम्मू कश्मीर का भारत का हिस्सा बनने का फैसला सही साबित हुआ है। इधर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी श्रीनगर के लोक भवन में तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों को बधाई दी। इस बीच जम्मू कश्मीर के सभी जिला मुख्यालयों में भी ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित किए गए। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: छत्तीसगढ़ में 80वां स्वाधीनता दिवस उत्साह उल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली।
5: रायपुर में आयोजित स्वाधीनता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसिक नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प से नक्सलवाद के विरुद्ध ऐतिहासिक सफलता मिली है। माओवाद से मुक्त बस्तर में आज तिरंगा यात्राओं के माध्यम से स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा है। जो क्षेत्र कभी हिंसा और भय से प्रभावित थे, वहाँ आज शांति, विश्वास और विकास की नई सुबह हुई है। उन्होंने कहा कि बस्तर की सर्वांगीण प्रगति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है। कभी माओवाद से प्रभावित रहे और अब नक्सलवाद से मुक्त हो चुके राज्य के बस्तर संभाग के करीब 90 गांव ऐसे हैं जहां आजादी के बाद आज पहली बार स्वाधीनता दिवस पर तिरंगा फहराया गया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: केरलम में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रध्वज फहराया। इसके बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा की।
6: तिरुवनंतपुरम में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने परेड की सलामी ली। विभिन्न सशस्त्र बलों की टुकड़ियों के साथ माउंटेड पुलिस, एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड्स तथा स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स ने इसमें हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस संदेश देने के बाद पुलिस, अग्निशमन और बचाव सेवा तथा कारागार विभाग के कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक प्रदान किए। कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान समारोह में वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने परेड की सलामी ली। समारोह के दौरान नौसेना के जहाजों को झंडों से सजाया गया। इडुक्की में बांधों और नौका केंद्रों पर स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किए गए, जिनमें पर्यटकों ने भी भाग लिया। कोवलम बीच के निकट एक निर्जन द्वीप पर तटरक्षक बल ने भी स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया। स्मिथि एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: वैश्विक नेताओं ने भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत संबंधों का उल्लेख किया है। इजराइल के राजदूत रूबेन अजार, अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कोसिना, श्रीलंका के उच्चायुक्त महेशिनी कोलोन, नेपाल दूतावास, फ्रांस दूतावास, ऑस्ट्रेलिया के उप उच्चायुक्त और कनाडा के उच्चायुक्त ने भी भारत की विरासत, विविधता, आर्थिक क्षमता और बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों पर जोर देते हुए शुभकामनाएं दी। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह और मालदीव नेशनल पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद नाजिम ने भारत के विकास और मालदीव के साथ घनिष्ठ साझेदारी की प्रशंसा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल

0: श्याम, तुझे पता है तुम्हारे बाबूजी को कभी प्यार का पैगाम भेजना ही नहीं आया।
1: क्या कहती हो श्यामू की माँ?
0: और क्या, आपको जब भी प्यार जताना होता था हिंदुस्तान का झंडा भेज देते थे।
1: माँ जानती हो बाबूजी ने सबसे ज्यादा प्यार किससे किया है?

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರಾಲಯ.

0: 40 लोगों की मौत। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। एफआईएच हॉकी विश्व कप में भारत ने ग्रुप डी के मैच में वेल्स को 3-1 से हराया और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गोल में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज असीमा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन हुआ।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया।
1: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि इन संकटों के दौरान टीके, ईंधन, गैस, डीजल और उर्वरक की कमी को लेकर काफी अफवाहें फैलाई गई थी। श्री मोदी ने कहा कि सुनियोजित नीतियों, तैयारियों और समय रहते उठाए गए कदमों के कारण देश ने इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है।
1: एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूँ, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से सप्तधारा की शक्ति के उपयोग का आह्वान किया।
1: मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूँ। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
0: स्वतंत्रता दिवस समारोह पर हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट।
2: आज स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 वर्षों से चली आ रही गौरवशाली विरासत का स्मरण किया गया। इस वर्ष पहली बार लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया गया। प्रधानमंत्री को तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं भारतीय वायुसेना के दो MI-17 हेलीकॉप्टरों ने समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा की। सेना के बैंड ने

0: वंदे मातरम की मधुर धुन प्रस्तुत की और लाल किले पर मौजूद सभी लोगों ने एक साथ राष्ट्रीय गीत का गायन किया। इसके बाद राष्ट्रगान का भी गायन किया गया। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लगभग 5,000 विशेष अतिथियों को लाल किले पर आमंत्रित किया गया था। सुपर्णा और सौम्य के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। महाराष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों को संबोधित करते हुए किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मेघालय के राज्यपाल सीएच विजय शंकर ने शिलांग स्थित लोकभवन में स्वतंत्रता दिवस पर पारंपरिक एट होम समारोह का आयोजन किया। बिहार में स्वतंत्रता दिवस पारंपरिक उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित मुख्य राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। लद्दाख में स्वतंत्रता दिवस समारोह करगिल के ख्री सुल्तान चो स्पोर्ट्स स्टेडियम में देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। आकाशवाणी करगिल ने बारू परिसर में उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। मणिपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह इम्फाल पश्चिम स्थित प्रथम मणिपुर राइफल्स परेड ग्राउंड में आयोजित हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने आज स्वतंत्रता दिवस पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी का उल्लेख किया। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम ने कौशल विकास, डिजिटल तकनीक, सतत विकास और उन्नत विनिर्माण के क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग का उल्लेख किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने भी भारत को शुभकामनाएं दी। लातविया के विदेश मंत्रालय ने भारत की निरंतर प्रगति, एकता और समृद्धि की कामना की। इसराइल के राजदूत रुवे नजार, अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कोसिनो, श्रीलंका के उच्चायुक्त महिशिनी कोलोन ने, ऑस्ट्रेलिया उच्चायुक्त और कनाडा के उच्चायोग ने भी भारत को शुभकामनाएं दी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने कहा कि आजादी के 8 दशक भारत की आकांक्षाओं, दृढ़ता और अटूट भावना को दर्शाते हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की शुभकामनाओं के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी तथा सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इंडोनेशिया में फ्लोरेस द्वीप तट के पास आज आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। भूकंप के बाद देश के कई हिस्सों में 1 मीटर से कम ऊंचाई की सुनामी लहरें भी दर्ज की गई। मुख्य शहर माउमेर में बचाव दल ने 20 शव बरामद किए और 6 घायलों को बाहर निकाला। दक्षिणी लेबनान में आज इसराइल के हवाई हमले में 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने बताया कि अंसार गांव में एक मकान पर हुए इस हवाई हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। इसराइल की सेना ने कहा है कि इसराइली सैनिकों के खिलाफ की गई एक कार्रवाई के जवाब में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान कल से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। यह रखरखाव के कारण प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा।
3: अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण है। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10

0: बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: सहकारिता मंत्री अमित शाह कल राजस्थान के अलवर में अलवर सरस डेयरी परिसर में नए डेयरी प्लांट की आधारशिला रखेंगे। वे वर्चुअल माध्यम से विभिन्न डेयरी प्रसंस्करण संयंत्रों और पशु आहार संयंत्रों का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा रोजगार उत्सव के तहत नवनियुक्त 10,500 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। दूरसंचार विभाग पुणे में 17 से 21 अगस्त तक ब्रिक्स सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी ट्रैक का आयोजन करेगा। इस वर्ष का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और बदलाव। कार्यक्रम की शुरुआत 7वें ब्रिक्स आईसीटी कार्य समूह की बैठक से होगी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मूसलाधार वर्षा की संभावना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 21 अगस्त तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। और खेलों में नीदरलैंड्स के एम्स्टलविन में एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में आज भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। हरमनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला मैच 17 अगस्त को इंग्लैंड से खेलेगा। वहीं श्रीलंका के साथ गोल में खेले जा रहे भारत के ऐतिहासिक 600वें टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बनाए। भारत की ओर से देवदत्त पडिक्कल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं तथा महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग करने के लिए सप्तधारा रूपरेखा का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। इंडोनेशिया के फ्लोरेस तट के पास आए भूकंप में 47 लोगों की मौत और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गोल में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi leads the nation in celebrating 80th Independence Day, urges citizens to dream big for a strong and self-reliant India. Prime Minister emphasizes on empowerment of youth and women for a Vikasit Bharat, unveils Saptadhara framework with aim of harnessing youth power to propel India to new heights. Prime Minister Modi announces target of 100 gigawatts nuclear power capacity by 2047. World leaders extend Independence Day greetings to India, praising its democratic journey, civilizational heritage, and expanding role in regional and global cooperation. In Indonesia, death toll in powerful earthquake rises to 47. Heavy rain alert issued in Arunachal Pradesh, Gangetic, West Bengal, Odisha, Uttar Pradesh, and Uttarakhand till tomorrow. In hockey, India defeat Wales 3-1 in Group D match of FIH World Cup in the Netherlands. and in cricket.

0: 88. India posed 288 for 2 at stumps on day 1 of first test against hosts Sri Lanka. The nation is celebrating its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi led the Independence Day celebrations from the iconic Red Fort in Delhi. Addressing the nation from the ramparts of Red Fort, the Prime Minister said over the past 12 years, crores of citizens of the country, with their determination and dedication, made every possible effort to take the country to new heights. He said, a nation achieves greatness when it moves forward on the strength of its own dreams and resolve. The Prime Minister stressed that higher dreams and stronger resolutions raise the overall scale and capability of the nation's efforts.
1: कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है बड़े सपने हमारी सोच को विस्तार देते हैं हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है
0: Prime Minister Modi said energy security is one of the major requirements of the present times and the government has taken several significant steps in this direction. He said nuclear energy is an important means of ensuring a country's energy security.
1: Energy security is our time's demand. And that's why we have taken one after another a strong step in that direction. Energy security is a big medium. परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य पर जाने का रास्ता तय कर लिया है 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं
0: Prime Minister Modi said the government has opened up 99% of offshore areas that were once designated as no-go zones and converted them into go-ahead areas. He said the government is now actively pursuing exploration beneath the sea and making efforts to discover new reserves.
1: हमने 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया और अब हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं हम प्रयास कर रहे हैं हमने पिछले वर्ष उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखते हुए समुद्र मंथन की घोषणा करके काम को गति देने का निर्णय कर लिया है
0: Stressing on empowerment of youth and women for a Vikasit Bharat, Prime Minister Modi announced to provide free online coaching for poor and middle-class families for various public examinations. He also announced that the government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said this will enable them to take the lead in the global AI sector.
1: हमने पिछले दिनों AI Impact Summit किया था. AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे
0: The Prime Minister urged all parties to support the implementation of women's reservation in Parliament and state assemblies without making it a political fight. He said women should be given the opportunity to contribute to shaping India's policies. On nationalism, the Prime Minister said the people of the country gave the opportunity to serve the nation in 2014 and he resolved to make the country free from nationalism. In his address, the Prime Minister called upon the nation to harness the 7 streams of strength called Saptadhara. He said in the next 5 to 7 years, the country will achieve all that could not be achieved in the past 5 to 7 decades.
1: आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूं आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ वो सप्त धारा के सामर्थ्य से शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा
0: Prime Minister Modi said in the next 7 to 8 years, another 5 to 8 semiconductor plants are set to commence operations. He said India has started production at 3 semiconductor manufacturing plants.
1: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक